एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026। श्रोता, इस समय सुबह के 5:58 और 33 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट

0: गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक सौ 3.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। चिंतन

परमात्मा का प्रेम तो सभी पाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रेम को पाने के लिए तैयारी नहीं करते और ना ही अहंकार को छोड़ते हैं। प्रेम और अहंकार कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। यदि हम अपने दिल में सच्चा प्रेम और भक्ति जागृत करना चाहते हैं, तो मैं शब्द अपने अंदर से मिटाना होगा। जिस प्रकार पत्थर में हरियाली नहीं उठती, नए जीवन का सृजन नहीं होता, उसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं फूटता। जब पत्थर को पीसकर उसकी धूल बनाई जाती है, तो उस नर्म मिट्टी में यदि बीज डाला जाए तो अंकुर फूटने के बाद उसमें पौधा उग जाता है और अच्छी तरह से विकसित होता है। यही बात हम पर भी लागू होती है। जब तक पत्थर रूपी अहंकार हमारे मन में रहेगा, तब तक ना भक्ति ना प्रेम का अंकुर उसमें विकसित हो पाएगा। अहंकार को मिटाकर ही परमात्मा की भक्ति पाई जा सकती है। उनसे मिलने के मार्ग को हम साफ कर सकते हैं और जन्म जन्मांतर की भटकन से बच सकते हैं। चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

मनुष्य का स्वभाव है, वह हर काम के लिए समय निकाल लेता है, लेकिन परमात्मा के नाम की स्तुति करने के लिए कोई न कोई बहाना ज़रूर बनाता है, और इस तरह वह परमात्मा की मेहर, उनकी कृपा दृष्टि उस व्यक्ति से कोसों दूर हो जाती है। प्रभु के दर्शन न करने के लिए सर्दी, गर्मी, बारिश, सेहत ठीक न होने और न जाने कितने नित्य नए बहाने खोजना उसका मानो धर्म बन जाता है। हमारे दिल में यदि परमात्मा के दर्शन पाने की चाह हो तो सारी रुकावटें अपने आप ही दूर हो जाती हैं और उस परम शक्ति से मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। यदि हम परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो परमात्मा लाख कदम बढ़ाकर हमारी ओर आते हैं।

अहंकार हमारी बुद्धि और समझ दोनों को बंद कर देता है। हमारे जितने भी सद्गुण होते हैं अहंकार के धुएं से ढक जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति किसी भी चीज़ में कुछ अच्छा ना देखकर उसमें दोष निकालते रहते हैं, लेकिन वह अपने दोषों की ओर ध्यान नहीं देता बल्कि उसे अपने गुणों में आंकना शुरू कर देता है। अहंकारी व्यक्ति को यदि कोई कुछ कहता है तो वह आग बबूला होकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वास्तव में जो लोग हमारी निंदा करते हैं वे हमारे हितैषी होते हैं, क्योंकि हमें अपने अवगुणों की पहचान यही लोग करवाते हैं और हम उसे सकारात्मक रूप से लेकर सुधार करना शुरू कर देते हैं। कहा भी गया है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबन बिन निर्मल करे सबाए।

विनम्रता और शरणागति सर्वोच्च गुण हैं। विनम्र होने का अर्थ है अपने आप पर नियंत्रण करके दूसरों के प्रतिकूल व्यवहार को सौम्य रूप से लेना। विनम्र वही व्यक्ति हो सकता है जिसके मन में दया, प्रेम, सद्भावना और ईश्वर भक्ति हो, क्योंकि इन गुणों का सृजन केवल उस परम शक्ति के हाथ में है।

कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ी जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। अर्थात संगति का असर जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है, जैसा संग वैसा रंग। तो ये रंग अगर हम परमात्मा के साथ बनाएं तो उनकी भक्ति प्रेम रस से हम अपने जीवन को निहाल कर सकते हैं।

वंदना कार्यक्रम के आखिरी भक्ति रचना के साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान से भक्तिमय पाठ।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंदमग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

अभी आपने श्री रामचरित मानस गान से भक्तिमय पाठ सुना। आज आपने सुना भाग 115। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। पहले 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। सुबह 9:18 पर प्रादेशिक समाचारों के बाद गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग 9:30 से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। गीतों का कारवां, इस कार्यक्रम का लुत्फ आप उठाएंगे सुबह 10 बजे। पहाड़ों के सुर, हिमाचली गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से सुबह 11 बजे प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर आप सुनेंगे कव्वालियां। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 11:30। दोपहर 12 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुनो सखी, महिलाओं के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम 1:10 से रिले किए जाएंगे। दोपहर 3 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों के बाद 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे 3:10 से शाम 5 बजे तक, और शाम 5 बजे समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा, जिसमें 5 बजे हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे। संध्याकालीन भजन आप सुनेंगे 5:10 पर। 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे स्पोर्ट्स वीट। शाम 5:55 पर कार्यक्रम विवरण के बाद आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:05 पर सुनेगा कार्यक्रम किसान वाणी। 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजंग रैंदियां। शाम 7 बजे के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार उसके तुरंत बाद रिले किए जाएंगे। सात 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर रिले किया जाएगा। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8 बजे सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर। रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही गीतकार और प्रेम धवन के लिखे कुछ चुनिंदा नगमे आज आपको सुनवाए जाएंगे। 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है और ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 10 बजे रूपक सुनवाया जाएगा। 10:30 पर चित्र पर संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत पुरानी फिल्मों के सदाबहार गीत पेश किए जाएंगे। सभा के अंत में रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुन पाएंगे। श्रोता, ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे।
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका रचा झा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं को हमारी आज के सुबह की मीठी सी सप्रेम नमस्ते। नई ऊर्जा, नई जानकारियां और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम लेकर हम स्टूडियोज में बिल्कुल पहुंच चुके हैं। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ इस वक्त आपने ट्यून इन किया है और इस फ्रीक्वेंसी पर आज मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। अपनी इस सुहानी सी सुबह को और भी आनंदमय बनाने के लिए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार।
2: आज का विचार।
1: जो निशुल्क है वही सबसे ज्यादा कीमती है। नींद, शांति, आनंद, हवा और सबसे कीमती है हमारी सांसें। इसलिए कीमती चीज़ों के पीछे भागने के बजाय निशुल्क यानी मुफ्त मिलने वाली चीज़ों पर हमें अपने जीवन में सबसे अधिक विचार करना चाहिए। तो चलिए, ये तो था आज का विचार और गीत संगीत के साथ आगाज़ हम इस कार्यक्रम का करेंगे।

0: बिल्कुल श्रोता, नीले गगन के तले इस खूबसूरत सी धरती का सुंदर संसार हमें देखने को मिलता है, इस धरती का प्यार हमें देखने को मिलता है। बस पर्यावरण की सुरक्षा हमने करनी है। जानकारियों के साथ सुरों के तार भी हमने सुबह सुहाने कार्यक्रम में छेड़ दिए हैं। हमें पता है हर कोई सुबह सुबह अपने कामों में व्यस्त होता है, बस दौड़ते भागते या फिर चाय की मीठी चुस्कियों के साथ आप हमारा ये प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी है वही जानी पहचानी 103.4 मेगाहर्ट्ज़। जून का महीना चल रहा है जिसे ज्येष्ठ माह कहा जाता है। बहुत गर्मियां पड़ रही हैं तो बस यही गुजारिश करेंगे, गर्मियों में थोड़ा सा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खूब पानी पिएं, धूप से बचें, अपने घर के बाहर के सारे काम सुबह सूरज निकलने से पहले या सूरज छिपने के बाद जल्दी जल्दी से निपटा लें। और हाँ, आजकल के मौसम में ठंडे ठंडे पानी से नहाने का अपना ही आनंद है। तो चलिए आपको भी इस गाने के माध्यम से ठंडक आप तक पहुँचाते हैं, और ताकि आपको भी इस ठंडक का एहसास आपके घर द्वार तक हो जाए।
1: ठंडे ठंडे पानी से ना।

श्रोता, हम आपसे बात कर रहे हैं इस रेडियो के माध्यम से और आप हमारे विचार सुन रहे हैं, उन्हें एनालाइज कर रहे हैं, यानी आप भी सभी बातों पर मंथन करते हैं, विचार करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। घर में अगर चार लोग रहते हैं लेकिन बातचीत नहीं करते तो सब कुछ सूना सूना सा हो जाता है। एक दो दिन के बाद अगर यही स्थिति बनी रहे तो अपना घर भी अजनबी जैसा लगता है। अगर कोई मनमुटाव है, किसी तरह की नाराजगी है, किसी विषय पर मतभेद है तो संवाद सबसे बढ़िया माध्यम है, जिसे किसी भी समस्या के हल पर पहुंचा जा सकता है। ये तो हो गई घर की बात, लेकिन आज हम एक खास दिन मना रहे हैं। वो दिन है इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग्स अमंग सिविलाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद। संवाद से समझ, समझ से शांति और शांति से समृद्धि। जब राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो हर देश के प्रतिनिधि उस समस्या पर विचार विमर्श करते हैं, ताकि समस्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 जून यानी आज ही के दिन को इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों और समुदायों के बीच अपनी समझ और आपसी सम्मान, सहिष्णुता और सहयोग को बढ़ावा देना है। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आपने इस वक्त ट्यून इन किया है और एक गीत का आनंद लेते हैं।

बिल्कुल, दिल में जो बातें हैं वो मिलजुल कर सुलझानी है संवाद के माध्यम से। सुबह के 7:26 और 29 सेकेंड आपने ट्यून किया है 103.4 MHz। और श्रोता, बात करेंगे, गर्मी में अक्सर पानी की किल्लत सभी को होती है और पानी हमारे लिए कितना आवश्यक है ये तो हम सब जानते ही हैं, क्योंकि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं उसके बाद हमारे शरीर की दूसरी सबसे अहम ज़रूरत पानी होता है। पानी के बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ से जल की आपूर्ति होती है, इसमें नदियाँ, तालाब, झरने, झीलें आदि हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी जो पीने के लिए प्रयोग होता है वो भूगर्भ जल है, यानी भूमि के नीचे का जल। तो आज हम मना रहे हैं विश्व भूगर्भ जल दिवस, जो हर साल 10 जून के दिन मनाया जाता है। हैंडपम्प आदि के ज़रिए हम धरती के नीचे बह रहे अमृत यानी जल का प्रयोग पीने के लिए करते हैं, खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए करते हैं। ये तो भूगर्भ जल की मात्रा पूरी तरह से बनी रहे तो इसके लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है। आजकल बहुत से घरों में छतों पर पाइपों के ज़रिए बारिश का पानी स्टोर किया जाता है और उसे ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाकर रखा जाता है ताकि भूमि में जल स्तर बना रहे। इसे वाटर हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये भी है कि लोगों को ये समझाया जा सके कि पानी एक संसाधन ही नहीं बल्कि अमूल्य विरासत है और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यक्तिगत रूप से हमें इसे बचाना हमारी जिम्मेवारी है।

श्रोतो, आज का वर्तमान कल का इतिहास बनता है तो बात करते हैं आज की कुछ ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में। भारतीय क्रिकेट के इतिहास के लिए 10 जून के दिन का खास महत्व है। यही वो दिन है जब भारतीय टीम को पहली बार लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट मैच में जीत हासिल हुई थी। कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने 10 जून 1986 को इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर इतिहास रचा था। सन 1246 में नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह प्रथम दिल्ली का शासक बना और इससे पहले दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह को निर्वासित कर दिया गया। सन 1848 में न्यूयॉर्क और शिकागो में के बीच पहला टेलीग्राफ लिंक शुरू हुआ था। सन 1946 में राजशाही खत्म होने के बाद इटली गणतांत्रिक राष्ट्र आज ही के दिन बना। सन 1966 में वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग महाराष्ट्र के नासिक जिले में से उत्पादन इसका आज ही के दिन शुरू किया गया था। सन 1972 में मुंबई के मडगांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण आज ही के दिन किया गया। सन 2002 में पाकिस्तान ने विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का नाम बदलकर शाह गौरी कर दिया था। सन 2003 में नासा का मंगलयान रोवर आज ही के दिन लॉन्च किया गया।

से नेहा हमार होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धाक दिनक दिन ताक।
1: सुबह सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के समाचारों की।

0: खबर आज की।
1: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। आज नई दिल्ली में होगी एनडीए की बैठक। बुल्गारिया और फिनलैंड के दो दिन के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीकी सहायता से और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए भूमि पतन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इंदौर में 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू होगी, जिसमें खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण पर चर्चा की जाएगी। और अब जानते हैं मौसम का हाल। भारत के मौसम विभाग IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हीट वेव यानी लू की स्थिति को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भीषण लू का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है।

0: सुबह सुहानी।
1: आप सुन रहे थे जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम शुभ ब्याग।

शुभ कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत इस कार्यक्रम में। और हिमाचली गीत और लोक संगीत लेकर हम स्टूडियोज में उपस्थित हो चुके हैं और गाना कुछ इस तरह से सुनवा रहे हैं कि किसी की खूबसूरती बयां करने के अलग अलग अंदाज हो सकते हैं। तो चलिए कुछ ऐसा ही लोकगीत आप तक पहुंचा रहे हैं।

गर्मियों के दिनों में बहुत सारे फल फूल हमारे आसपास उगते हैं, उन्हीं में से एक बहुत ही लजीज मीठा फल है शहतूत। ऐसी चीज़ें जो मौसमी होती हैं हमें ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि ये साल भर के लिए हमारे शरीर की विटामिन्स आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। बात शहतूत की हो रही है तो चलिए कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं।

0: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू। SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को है, अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे।
1: तो बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026 जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026 भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
8: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
9: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
8: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित

0: किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
3: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
2: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Akashvani presents Morning News. Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi becomes longest serving elected Prime Minister of India. World leaders hail Prime Minister Modi's transformative governance and advocacy for Global South. NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast.

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में अभी आप वारिस फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। गीतकार वर्मा मलिक, संगीतकार उत्तम जगदीश। गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। स्वर्ग नर्क फिल्म का गीत अभी आपने किशोर कुमार की आवाज़ में सुना। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीतकार राजेश रोशन। प्रेम गीत फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
2: पर दी
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
3: अच्छा
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। टीएनसी अप्लाई।
6: नई विक्टोरियस, स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती। 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
7: सुबह के 8:49 और 42 सेकंड। गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से।

0: इंदिवर के लिखे बोलों को अभी आपने कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में सुना। कलाकार फंक का ये गीत था किशोर कुमार की बेहद मीठी सी आवाज इस गीत में थी।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई। This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
5: Nexa. नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28

0: 3.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्तें लागू।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल, विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: रिश्तों की खुशबू से महकेगा हर पल,
4: जहां संवरेगा सखियों का आज और कल,
5: जानकारी, मनोरंजन और भावनाओं से भरपूर,
4: जहां आप नहीं रह पाएंगे हमसे दूर।
3: आ रहा है आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी,
5: जहां मिलेंगे जीवन को बेहतर बनाने वाले विचार
4: और खान पान में बनाएंगे कई व्यंजन और अचार।
5: तो सोमवार से शनिवार सुनना ना भूलिए
4: आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी,
3: दोपहर 12:30 पर
5: सिर्फ आकाशवाणी धर्मशाला से।

अभी आप सुन रहे थे गाने सुहाने FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। गीतों भरी सुबह और गीतों से सजे कार्यक्रम गीतांजलि कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। मनोरंजन के इस सफर में हमारा और आपका ये साथ बना रहेगा अब से लेकर पूरे 10 बजे तक। और आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपनी रेडियो दोस्त पवन शर्मा के साथ।

दोस्तों, कभी कभी हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। सोचने और होने का फासला ही जिंदगी है, और कितना सब्र हम इस फासले को मिटाने के लिए रखते हैं ये तो सभी के पेशेंस लेवल पर डिपेंड करता है।

दोस्तों, बहुत सारे ऐसे गीत होते हैं उन्हें चाहे जितनी बार भी सुना जाए मन नहीं भरता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हमें ज़रूर बताएं। भाई, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, जो साउंड ट्रैक मन को भा गया वो रिपीट कर करके मैं 5-10 बार तो ज़रूर ही सुन लेती हूँ। तो चलिए, आपको भी कुछ ऐसे ही गीतों से हम रूबरू करवा रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट साउंड ट्रैक्स जो कभी ना कहीं दिलों के तार छेड़ते हैं और उन गानों को हम एंजॉय करते हैं। फिलहाल प्रोग्राम सुन रहे हैं गीतांजलि, आकाशवाणी धर्मशाला से।

कुछ मीठी सी गपशप और गीतों का साथ, यही तो है कार्यक्रम गीतांजलि का मनोरंजन सफर। फिलहाल आपने ट्यून इन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़। गीतांजलि कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं अपने रेडियो दोस्त पवन शर्मा के साथ।

गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और इस कार्यक्रम के बाकी गीत लेकर लौटेंगे 9:30 पर। 9:18 होने को हैं, अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, जिसके लिए आपको करना होगा कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। देश विदेश के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि को बताया ऐतिहासिक। कल 11 जून को आयोजित होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री आज दिल्ली के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्रदेश के सांसदों व विधायकों के साथ बैठक कर जनजाति समुदाय के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर किया विचार विमर्श। और प्रदेश में पर्यटन सीजन जोरों पर, सैलानी ले रहे हैं प्राकृतिक सुंदरता का आनंद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर देश विदेश के नेताओं ने बधाई देते हुए भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर से निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की सभ्यता से जुड़ी विरासत पर गर्व को बढ़ावा दिया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला परसद विशेषर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल 11 जून को होने वाली इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जुड़े चार प्रमुख मुद्दों को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इनमें RDG बंद होने से राज्य को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई, GST व्यवस्था, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अधिक प्रभावी व व्यवहारिक मुआवजा व्यवस्था और लंबे समय से लंबित ग्रीन बोनस की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। गौरतलब है कि नीति आयोग की बैठक का एजेंडा मानव संसाधन विकास, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसे श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है जो प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। वे कल शिमला में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति व अनुश्रवण प्राधिकरण की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बैठक में 5,870.01 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश वाले 42 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में दी गई स्वीकृतियां एक प्रगति व समावेशी औद्योगिक वातावरण बनाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऊना जिला के औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल में जल्द ही लोगों को आधुनिक सीवरेज व्यवस्था की सुविधा मिलेगी। जल शक्ति विभाग ने 24 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती आबादी, औद्योगिक गतिविधियों और शहरी विस्तार को देखते हुए आधुनिक सीवरेज व्यवस्था समय की मांग थी। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत आधुनिक सीवरेज नेटवर्क को विकसित किया जाएगा और परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में स्वच्छता के अलावा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। शिमला में चल रहे 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की धूम जारी है। 12 जून तक चलने वाले महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, फ्लावर शो व खेलकूद प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। एक रिपोर्ट।
1: ऐतिहासिक रिज मैदान पर जारी अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव स्थानीय लोगों सहित यहाँ पहुँचे हजारों पर्यटकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। बीते कल रिज मैदान पर माँ की ममता समाज की शक्ति थीम पर आधारित महानाटी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा बाहरी राज्यों के कलाकारों के अलावा प्रदेश के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने भी यहाँ मौजूद लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। महोत्सव में रिज मैदान पर फन अट्रैक्शन के रूप में स्टैच्यू मैन व फ्लावर शो भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोगों की सुविधा के लिए जहां परिवहन विभाग ने विशेष टैक्सी संचालित की है, वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं जगमोहन शर्मा।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के 25 युवा प्रतिभागियों ने कल स्पीति घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर हिक्किम पोस्ट ऑफिस, अपने परिजनों, मित्रों और प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजे। इन प्रतिभागियों ने गोम्पा, चिचमपुल व लंगजा गांव का दौरा कर यहाँ की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और जीवन शैली को भी जाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने हिमाचल प्रवास के दौरान कल शिमला में राज्य के सांसदों व विधायकों के साथ

0: बैठक की। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने की। बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं सहित सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास और वहाँ के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिकता है। अंतर सिंह आर्य ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विषयों व सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने यौवन पर है। मैदानी राज्यों से लोग हिमाचल के शुद्ध वातावरण का आनंद लेने के लिए राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। कुल्लू जिले में हर रोज लगभग 5,000 सैलानी यहां आकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
1: कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने यौवन पर है तथा प्रतिदिन लगभग 5,000 पर्यटक वाहन यहां आ रहे हैं। इतनी अधिक संख्या में वाहनों के आने के बावजूद सैलानियों व स्थानीय लोगों को स्वच्छ एवं ताजा हवा मिल रही है। कुल्लू मनाली का स्वच्छ वातावरण एवं निर्मल जल स्रोत लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। मनाली व आसपास के इलाकों में अमूमन एक आध दिन को छोड़कर बारिश हो जाती है, जबकि मौसम के खराब रहने के समय ऊंची चोटियों पर हल्का फुल्का हिमपात हो जाता है, जिसके चलते वातावरण में वायु प्रदूषण का असर देखने को नहीं मिलता है। बहरहाल पिछले वर्ष से लेकर अब तक वायु गुणवत्ता संतोषजनक बनी हुई है, जो घाटी के पर्यावरणीय संतुलन के लिए एक अच्छा संकेत है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: चंबा जिला के जंगलों में लगी आग से करोड़ों रुपए की वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं दुर्लभ वन्य जीवों और जैव विविधता पर भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मुख्य वन्य अरण्यपाल राकेश कुमार ने बताया कि विभागीय कर्मचारी फील्ड में तैनात है, जो आग बुझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने वाले लोगों के खिलाफ भविष्य में कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, पारंपरिक रास्तों को रोकना गैर कानूनी, भूमि मालिक भी बंद नहीं कर सकते। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। दैनिक जागरण की एक खबर है, 5,870 करोड़ रुपए के निवेश से लगेंगे 42 उद्योग, 13,000 को मिलेगा रोजगार। पंजाब केसरी लिखता है, कांग्रेस का सख्त रुख, नीरज भारती सहित 4 पदाधिकारी निष्कासित। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, दिहाड़ीदार और पार्ट टाइम कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी। जबकि दैनिक भास्कर की सुर्खी है, नॉर्वे के साथ मिलकर कचरा प्रबंधन और हरित विकास पर काम करेगा हिमाचल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। देश विदेश के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि को बताया ऐतिहासिक। कल 11 जून को आयोजित होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री आज दिल्ली के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्रदेश के सांसदों व विधायकों के साथ बैठक कर जनजातीय समुदाय के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर किया विचार विमर्श। और प्रदेश में पर्यटन सीजन जोरों पर, सैलानी ले रहे प्राकृतिक सुंदरता का आनंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 9:30 और 18 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए गीतांजलि कार्यक्रम के बाकी गीत।

कुछ मीठी सी गपशप और गीतों का साथ, यही तो है कार्यक्रम गीतांजलि का मनोरंजन सफर। वैसे सफर कोई भी हो अच्छा है, हम सफर हो तो समय कब बीत गया पता नहीं चलता। जैसे अब देखिए, हमने प्रोग्राम शुरू किया था ठीक 9:36:27 बिल्कुल हो गए हैं, पर चलो कोई बात नहीं, समय हमारा मस्त और बहुत सुहावना बीत रहा है क्योंकि गाने हम बहुत मस्त आपके लिए बजा रहे हैं।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: नीलम, छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
3: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
2: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
3: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
4: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
6: Hurry, offers till stocks last.
7: क्या कहता है आज का ये दिन? कुछ सोचा है आपने? गर्मी भी ठीक ठाक महसूस की हुई होगी आजकल, और पहाड़ों में भी गर्मी हो रही है। बस थोड़े से ऐसे इलाके हैं जहां गर्मी बढ़ने पर शाम के समय बारिश की बौछारें बरस जाती हैं और फिर मौसम सुहावना हो जाता है। हिमाचल के सुहावने से मौसम का आनंद लेने के लिए ही तो टूरिस्ट हिमाचल की ओर रुख करते हैं। जब शहरों का टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास होता है, तब ये लोग राहत की सांस लेने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं। बस उनसे यही गुजारिश रहेगी, घूमने फिरने आप ज़रूर आएँ, मनोरंजन भी करें, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें, लेकिन सुंदरता बनाए रखने के लिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना, ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।

वैसे तो दोस्तों हर दिन सुहावना होता है, बस ये हमारी सोच का थोड़ा सा फर्क होता है। कभी कभार हमारा डेली रूटीन से हटकर कुछ लाइफ में करने का मन करता है। मुझे लगता है हर किसी के साथ ऐसा होता है। रोज के रूटीन वर्क से सभी को कुछ पल चुरा के घूमने फिरने या दोस्तों से मिलने जरूर जाना चाहिए। और ये बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक जैसा काम करता है, यानी हमें रिफ्रेश फील करवाता है। फिर हम अपने अगले कामों को भी बहुत अच्छे से तरीके से, अपनी जिम्मेवारियों को बहुत बखूबी निभाते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल रिफ्रेश हो चुके होते हैं।

श्रोताओं, गीतांजलि कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति की ओर है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान का, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और अब अपने रेडियो दोस्त पवन शर्मा को दो इजाज़त और बस यही कहना चाहेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें FM धर्मशाला।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां।
1: ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
2: गीतों का कारवां कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम, और आज मैं हूं आपके साथ रीना। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं चांदनी फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ।

Thank you.

0: हो चका चक फिर लो पान चबा अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जा।
1: कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अंजान का लिखा गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म डॉन से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं।
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: एक बार फिर से किशोर कुमार की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं याराना फिल्म से ये गीत। संगीत राजेश रोशन का है और गीत लिखा है अनजान ने।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पराया धन से के गीत। आवाज एक बार फिर से किशोर कुमार की। गीत लिखा है आनंद बख्श।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश किशोर कुमार की ही आवाज में, फिल्म का नाम है कटी पतंग। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है और गीत के लिए संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

0: छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa. हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शिव कुमार व साथियों को आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अगले लोकगीत।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: उपज गई आंब दी डाली।
4: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति राजेश कुमार की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर देश विदेश के नेताओं ने बधाई देते हुए इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की सभ्यता से जुड़ी विरासत पर गर्व को बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इधर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसा नायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स माराप्पे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल 11 जून को होने वाली इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से जुड़े चार प्रमुख मुद्दों को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इनमें RDG बंद होने से राज्य को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई, GST व्यवस्था, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अधिक प्रभावी व व्यावहारिक मुआवजा व्यवस्था और लंबे समय से लंबित ग्रीन बोनस की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। गौरतलब है कि नीति आयोग की बैठक का एजेंडा मानव संसाधन विकास, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने हिमाचल प्रवास के दौरान कल शिमला में राज्य के सांसदों व विधायकों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने की। बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं सहित सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जनजाति क्षेत्रों के समग्र विकास और वहां के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करना आयोग की प्राथमिकता है। अंतर सिंह आर्य ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विषयों व सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में वृद्धि के चलते खासकर मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। सिरमौर जिला के मैदानी इलाकों में भी बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: सिरमौर जिला के मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। यहां दिन के समय का तापमान 38 डिग्री से 40 डिग्री तक पहुंच रहा है। मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब, पांवटा साहिब के अलावा धौलाकुआं और जिला मुख्यालय नाहन में लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 11 जून से मौसम बदलेगा। ऐसे में 11 जून के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 11 व 12 जून को कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विकसित वाइब्रेंट विलेज यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के 25 युवा प्रतिभागियों ने कल स्पीति घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर हिक्किम पोस्ट ऑफिस से अपने परिजनों, मित्रों और प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजे। इन प्रतिभागियों ने गोम्पा, चीचमपुल व लंगजा गांव का दौरा कर यहां की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और जीवन शैली को भी जाना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं कव्वालियां। कार्यक्रम की पहली कव्वाली आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी द्वारा लिखी हुई, मोहम्मद रफी ने इसे गाया है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

कवालियां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली खान की आवाज में धड़कन फिल्म से ये कवाली। संगीत नदीम श्रवण का है और गीत लिखा है समीर ने।

0: कवालियां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
5: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
6: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
7: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर से नुसरत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म कच्चे धागे से ये कवाली।
8: जो सबको

अभी आप सुन रहे थे कवालियाँ। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
3: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
3: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
3: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
3: हैं। फिर क्या होता है विमलेश?
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
3: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
3: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
2: जी।
3: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
2: जी।
3: फिर कॉफी परोसी जाती है।
2: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
3: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
2: जी।
3: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
2: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
3: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
2: जी।
3: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
2: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
3: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
2: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें, और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी
0: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित

0: क्या क्या
1: जी? अच्छा कमल जी,
0: जी
1: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
0: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
1: ओह,

0: ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
1: ओ।
2: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: बिल्कुल अच्छा? ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो सुनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली हैं।
0: क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था।

0: वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
1: वांडी पेरियार?
0: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है। और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
0: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
1: जी,
0: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
1: अच्छा,
0: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
1: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
2: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
0: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
1: अच्छा,
0: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है। और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह। और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
2: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती

0: निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पहरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग
6: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बॉर्डर फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे गाया है सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कुमार सानू और अलका याग्निक की मिली जुली आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं बलमा फिल्म से ये गीत। इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म से ये गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और अनवर। गीत के लिए माफ कीजिए, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और गीत के लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: गाने सुने।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म जांबाज से ये गीत। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और इस खूबसूरत से गीत को गाया है किशोर कुमार और सपना मुखर्जी ने। गीत के बोल इंदिवर द्वारा लिखे गए हैं।

इसी खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न होता है। रीना को दीजिए अनुमति। सैनिक साथियों, जय हिंद।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी, और आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपनी रेडियो सखी सुमन के साथ।

नमस्कार सखियों, सुनो सखी कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी अपनी सखी सुमन। सभी प्यारी दुलारी सखियों को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते और हाँ, सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम में स्वागत है। सखियों, आज का कार्यक्रम फैशन गलियारा यानी फैशन की दुनिया, जिसमें हर तरह का फैशन, चाहे भारतीय संस्कृति से जुड़ा हो या फिर हो वेस्टर्न, हर कोई उसे अपनाना चाहता है। हर कोई आज के समय में खूबसूरत दिखना चाहता है, और जब हम खूबसूरत दिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें खुद को भी खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सगे कपड़ों की थोड़ी सी हम बात करें तो कपड़े इंसान के व्यक्तित्व को ही निखार देता है, व्यक्ति का रूप ही इससे बदल जाता है। आपने भी नोट किया होगा, आपने भी देखा होगा कि जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, और ख़ुद को अच्छा लगता है कि अरे हम अच्छे दिख रहे हैं। तो हुआ ना व्यक्तित्व में निखार। और फैशन सखियों कपड़ों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे व्यक्तित्व, हमारी सोच, हमारी संस्कृति पहचान को भी व्यक्त करने का एक तरीका है। थोड़ा सा हमें बातचीत करने का सलीका भी आना चाहिए। और साथ ही साथ व्यक्तित्व की बात करें तो इसमें हमारे कपड़े, हमारे बाल, हमारे अच्छे जूते चप्पल जो भी हम पहनते हैं, हर चीज़ शामिल रहती है। तो थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में निखार लाना भी ज़रूरी होता है। हम सभी अपनी भारतीय संस्कृति की थोड़ी सी बात करें तो इसमें भारतीय फैशन जो है अपनी समृद्ध विरासत और जीवांत रंगों और साथ ही साथ शानदार हस्तशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये प्राचीन परंपरा और आधुनिक डिजाइनों के एक अनूठा संगम है। तो सखियों कार्यक्रम में हम और भी बातें और जानकारियां साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने सखियों की खूबसूरती पर एक थोड़ा सा और प्यारा सा गीत आप तक पहुँचा देते हैं। जी हाँ सखियों, जब आप खूबसूरत लगती हैं तो हमारे अपने कई बार कमेंट करते हैं और कहते हैं कि कितना सुंदर आपको भगवान ने बनाया है और कितनी सुंदर आप दिख रही हैं। और हर कोई चाहता है कि हम खूबसूरत दिखें।

जी हाँ, श्रोताओं, कजरे की धार इतनी खूबसूरत होती है कि मन करता है देखते ही जाए। बहुत सारी सखियों को आदत होती है कजरा लगाने की, और जो कजरा लगाती हैं, आंखों में काजल डालती हैं, तो उनकी आंखें जो है बहुत खूबसूरत लगती हैं, बड़ी बड़ी सी लगती हैं, और फिर मन करता है कि उन्हें देखते ही रहें। तो श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के साथ हम कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो जानकारी है हमें अपनी सखियों के संग करनी है। तो ट्रेडिशनल आउटफिट की बात करें तो जो प्रमुख हमारे परिधान होते हैं, जैसे साड़ी, भारतीय नारी की पहचान है। बहुत सारी हमारी सखियां जो है साड़ी पहनती हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। खैर, कपड़े किसी भी तरह के हों, थोड़ा सा अपने गरिमा में रहकर पहने जाएं तो बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और जिस व्यक्ति ने, जिस महिला ने वो कपड़े पहन रखे हो, उसे हर कोई देखना चाहता है, निखारना चाहता है। और जब कोई निहारता है तो खुद को भी पता चलता है कि अरे, हमें देख रहा है कोई, या हमारे वस्त्र देख रहा है, इसका मतलब अच्छे लग रहे हैं हम, तभी लोग देखते हैं। और साथ ही साथ अगर हम भारतीय परिधान और साड़ी की बात कर रहे हैं, तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों जैसे बनारसी, कांजीवरम, चंदेरी और बांधनी में अलग अलग तरीके से बांधनी बांधी जाती है। सो आप सभी ने देखा होगा कि साड़ी बांधने के तरीके भी अलग होते हैं। कोई सामने से जो है साड़ी का पल्लू लेते हैं, कुछ पीछे से लेते हैं, तो अलग अलग तरीके से जो है साड़ी को पहना जाता है। और फैशन की बात सखियों हमारे कार्यक्रम में हो रही है, हमारी सखियाँ फैशन ना करें ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। और फैशन की बात हमारे जहन में आते ही हमारा ध्यान खुद की ओर या हमारी महिला बहनों की ओर चला जाता है। खैर, हम महिलाओं को, हमारी बहनों को फैशन करना भी चाहिए और करती भी हैं, लेकिन हमारे पुरुष भाइयों की बात करें तो वो भी किसी से कम नहीं हैं। शादी विवाह पर हम सभी ने देखा होगा कि पुरुष भी जमकर फैशन करते हैं और जो है खूबसूरत भी दिखते हैं। आज के समय में हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, उसके लिए बढ़िया बढ़िया से सुंदर वस्त्र खरीदे जाते हैं, खूब सारे शॉपिंग की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शॉपिंग करने के लिए वक्त भी खूब सारा लगाया जाता है। फिर कपड़ों की बात है, कपड़े सिलेक्ट करने हैं, और फिर दूसरी बात यह है कि महंगे कपड़ों को लेने के लिए हम समय भी ज़्यादा लगाते हैं। हमें पता होता है कि महंगी चीज़ बार बार नहीं ली जाती है, और फिर शादी में, विवाह में, फंक्शन में सुंदर भी हमें दिखना होता है। कहा भी जाता है, सखियों की खाया पिया कौन देखता है, पहनावा हर कोई देखता है। अच्छा दिखने में सखियों हमारा जो है आत्मविश्वास, हमने पहले भी बात की कि बढ़ जाता है, एक मन को खुशी मिलती है, मन को सुकून मिलता है कि हम अच्छे लग रहे हैं। आप सभी ने भी देखा होगा कि जब भी हम कभी तैयार होते हैं तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, कहीं बीमार हो तो बिस्तर में पड़े हों, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं, बीमार हैं, और कहीं जाना हो, फटाफट से तैयार होते हैं, उस समय बीमारी भी दूर भाग जाती है। बहुत सारी सखियों के चेहरे पर हंसी आ गई होगी कि भाई, हम भी इसी तरह से करती हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। भाई, ये तो हम सभी के साथ होता है, और बाहर कहीं जाकर थोड़ा सा खुद को भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बिस्तर से पड़े रहते हैं तो थोड़ा सा ढीला ढाला अपने आप को महसूस करते हैं, और कहीं बाहर जाते हैं तो फटाफट से शरीर में चुस्ती आ जाती है, सुंदर दिखते हैं, अच्छे लगते हैं, शॉपिंग भी करनी होती है और खाना पीना भी होता है। तो इसके साथ साथ जैसे हम फैशन की बात कर रहे थे, तो फैशन में हमारी बहनें और हमारे पुरुष भाई दोनों ही आगे रहते हैं। और जो है परिधानों की बात कर रहे हैं, तो पुरुषों के परिधानों की बात करें तो कुर्ता, पजामा और बढ़िया सी शेरवानी पुरुषों के व्यक्तित्व को निखारती है। अच्छी कटिंग, बालों की अच्छी पंजाबी जूती जिसे हम घुसा भी कहते हैं, और पुरुष ऊपर से गले में खूबसूरत सा दुपट्टा पहने, शादी के दिनों में इधर उधर भागते फिरते हैं, डांस करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं, ऊपर से उनकी बड़ी सी बढ़िया सी बनाई हुई अच्छी कटिंग से दाढ़ी, और कुछ क्लीन शेप भी होते हैं, सबका अपना अपना हिसाब होता है, सब अपने अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपने अपने तरीके से खूबसूरत दिखना चाहते हैं। और इस ड्रेस में हमारे पुरुष भाई भी अच्छे लगते हैं। आज हमारी सखियाँ कह रही होंगी कि भाई, आज कार्यक्रम महिलाओं का चल रहा है लेकिन पुरुषों की बात भी हो रही है। तो भाई सखियों, फैशन की दुनिया है, फैशन तो सभी करते हैं, चाहे बहनें हो, चाहे हमारे पुरुष भाई हो, फैशन की दौड़ में कोई भी पीछे
पीछे नहीं रहना चाहता है। तो थोड़ा सा फिर से हम आप सभी को लिए चलते हैं गीत संगीत की, और उससे पहले लेते हैं कार्यक्रम में एक अंतराल। अंतराल के ठीक बाद आपको सुनाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़ी रहे आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर,
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
7: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
6: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
7: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
8: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: सगे संतराल के बाद कार्यक्रम में फिर से वापिस आते हैं और जैसे कजरे की बात हम कर रहे थे, आंखों में काजल बहुत खूबसूरत लगता है, तो हमारी बहनों की आंखों में लगा काजल तो आज हमें भी अच्छा लग रहा है। तो आइए अपनी बहनों के लिए काजल से जुड़ा हुआ, यानी कजरे से जुड़ा हुआ एक प्यारा सा गीत सुना देते हैं।

सखी इस प्यारे से गीत के बाद फिर से हम वापिस आते हैं, कुछ बातें और अपनी सखियों के साथ कर लेते हैं। तो सखियों, जो पहनकर मन को खुशी मिले वही फैशन है। ऐसा भी नहीं है कि पहले के समय में फैशन नहीं था, तभी फैशन हुआ करता था। थोड़ा सा पहले के समय को याद किया जाए तो आज भी पहले की महिलाओं का यानी अपने बुजुर्ग जैसे हमारी दादी नानी की आंखों का सुरमा जैसे वो घर पर बनाकर लगाया करती थी, जिसे लगाकर उनकी आंखें जो है खूबसूरत लगा करती थी और नैन गजरारे लगा करते थे। बाहों में खूब सारी लाल चूड़ियाँ, कांच की बाजूबंद, गले में हार की शक्ल का गुदा हुआ गोदना जिसे आज के समय में हम लोग टैटू कहते हैं। और फैशन का चक्र भी घूमता ही रहता है, तभी तो गुजरे जमाने का फैशन लौट कर फिर से वापस आता है। चाहे गहने हो, कपड़े हो, चप्पल हो, पर्स हो या फिर हो हेयर स्टाइल, थोड़े से जोड़ तोड़ के साथ फैशन नए स्वरूप के साथ फिर से जुड़ जाता है। सिनेमा में हमेशा फैशन को प्रभावित किया है, बहुत तो कुछ हम सिनेमा को देखकर करते हैं, जैसे बाल साधना कट, चूड़ीदार के साथ टाइट कुर्ता, शिफोन की साड़ी, जूड़े में गुलाब, और भी बहुत सारी ऐसी सखियों चीज़ें हैं जैसे बिंदिया। बिंदिया भी बहुत ही हम जो है टीवी या सिनेमा से देखकर प्रभावित होकर लगाया करते थे। हमारी बहनें जो है कोई समय हुआ करता था, टीवी पर एक सीरियल आता था, नाटक आता था शांति, उसी तरह से शांति बिंदी लगाया करती थी जो थोड़े सा तीर के आकार की हुआ करती थी। फैशन सखियों हमें जीना सिखाता है, हमारे जीवन स्तर को बेहतर करता है। और आज के समय में हमें अपना ज़्यादा पैसा जो है हम लोग खर्च करते हैं फैशन के ऊपर, शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, और ऊपर से वहाँ पर खाने की तस्वीरें लेना, खाते समय तस्वीरें लेना, सोशल मीडिया पर डालना, सोशल अकाउंट पर हम उन तस्वीरों को डालते हैं जो कि आजकल के समय का चलन भी बन चुका है और धीरे धीरे हमारा अनुसरण भी लोग करते हैं। तो थोड़ा सा अपनी बातों को सखियों यहीं पर रोकते हैं और आपको सुनवाते हैं।

श्रोतो, इस गीत के साथ फिर से कार्यक्रम में वापिस आते हैं। तो फैशन की बात हम कर रहे थे। फैशन एक ऐसी चीज़ है जो सखियों हमें अधिक कमाने के लिए भी प्रेरित करती है, ताकि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च कर सकें और फैशन से हम अपने आप को खूबसूरत दिखा सकें। तो सखियों, इन्हीं बातों के साथ चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

इस प्यारे से गीत के साथ अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग दिया है विकास पठानिया ने। प्यारी सखियों नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार लेके जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
3: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए अब आपको बताते हैं कुछ टिप्पणियों के बारे में। एक साथी ने लिखा है, मुलाकातें प्रेम में कितनी ज़रूरी है ये तो प्रेम करने वाले ही जानते हैं। जब प्रेम होता है तो हम बहुत कुछ समझ लेते हैं। थोड़ा कम बोलना और हर बात को समझ लेने की शुरुआत प्रेम से ही तो होती है, पर प्रेम का हर पल मूल्यवान है। यही पल है जो हसीन है, खुशनुमा है, इन पलों को ज़ाया ना होने दें, क्योंकि जो भी है बस यही एक पल है। किसी ने लिखा है, आज की इश्किया इबारती इमरती में मिठास ही मिठास है, जहां प्रियतम और प्रेयसी दोनों की मोहब्बत का इजहार, इकरार, तकरार और स्वीकार का जिक्र है। कुछ शरारतें मोहब्बत के लिए ज़रूरी हैं जिनका खूबसूरती से समावेश किया गया है। क्या बात है, मतलब आपको यदि इस इबारत से समझ आ गया है कि हाँ आज हम कौन से गीत सुनवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। आइए अब आपको ये अगला गीत सुनवाते हैं, और शब्द तो जैसे कि आपने पहचान ही लिए हैं, तो लीजिए सुनिए ये गीत कल आज और कल इस फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें। नीरज ने इस गीत को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत। आप यहाँ आए किस लिए, तो यही वो शब्द हैं जो आपको पहचानने थे।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई।
1: हमारी आज की इबारत को एक श्रोता साथी ने कुछ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है, बात की शुरुआत में जब उसने पास बुलाकर कानों में कहा सुनो, तो वहाँ जो धड़कनों का बढ़ना था वो जज्बातों की सबसे सच्ची गवाही थी। अक्सर शब्द उतने गहरे नहीं होते जितनी गहरी वो खामोशी या पुकार होती है जो दो लोगों के बीच का तापमान बढ़ा देती है। उसने आपकी हालत देखकर बात बदल दी, यही तो उस दौर की तहजीब और परवाह है, जहां सामने वाले की झिझक का पूरा एहतराम किया जाता है। ये महज एक मुलाकात नहीं बल्कि शब्दों से बुना हुआ एक ऐसा खूबसूरत शायराना मंजर है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। एक साथी ने लिखा है, आज आपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफ़र कार्यक्रम में शामिल गद्यमय इबारत की इबादत से ये पता चलता है कि दोनों प्रणय आवेग में डूबे प्रेमी नयनों के सहारे से आगे बढ़ते हुए आपसी वार्तालाप के सागर में डुबकी लगाने के प्रयास में रत हैं और एक दूसरे के मनोदशाओं से भली भांति परिचित होने हेतु उद्यत हैं। इस दृष्टिकोण से आज की इबारत करने योग्य इबारत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसी इबारत से जुड़े गीतों में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं बातों बातों में इस फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, अमित खन्ना के बोल राजेश रोशन का संगीत।
2: सुनिए
3: कहिए कहिए
2: सुनिए सुनिए
3: कहिए कहिए।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत पढ़कर 45 साल पहले की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ लड़की का जो हाल है, अमूमन वो ही हाल हम लड़कों का भी हुआ करता था। किसी लड़की से प्यार है तो ग्रीन सिग्नल उधर से भी मिल रहा है, लेकिन इजहार कैसे करें बहुत मुश्किल थी। मैं आज की पीढ़ी को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि उनके ज़माने में मोबाइल आ गया और सब मुश्किलें आसान हो गई। हमें ले देकर सिर्फ खतों का सहारा था, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क थी। शर्म और झिझक का ठेका हमारी पीढ़ी ने ही उठा रखा था, लिहाजा प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। उसकी शादी कहीं और हो गई और मैं ज़िंदगी के नए सफ़र में नौकरी के लिए कहीं और चल दिया। अब इस बात को पढ़कर हम एक ही बात कहेंगे कि कभी कभी हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे बात बदल तो नहीं जाती, लेकिन दिलासा ज़रूर मिलता है। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी आप लोग बताते हैं कि पहले से ही इबारत डालते हैं, मुझे इबारत पहले से नहीं मिलती। जब आप रेडियो में बताते हैं तब इबारत सुनती हूँ और फिर उसके बारे में सोचने का, गाने पोस्ट करने का समय ही नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आपको इबारत नहीं दिख रही हो, आप पेज को रिफ़्रेश कीजिए। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो पेज को रिफ़्रेश कीजिए, विविध भारती सर्च करने के बाद एक बार फिर करके देखिए। हो सकता है कि पेज रिफ़्रेश ना होने के कारण आपको इबारत नहीं दिखती हो, जब आप रिफ़्रेश करेंगे उसके बाद भी जब आपको सुरीला सफ़र की पोस्ट दिखेगी उस पर आप मोर पर जाइए, या फिर आपको दिखेगा और देखें, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जहां आपको दिखे वहां आप क्लिक कीजिए तो आपको पूरी इबारत पढ़ने को मिल जाएगी। तो अगली बार ज़रूर बताइएगा कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
3: बाहर से कोई

चलिए एक बार इबारत फिर रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से गाने हो चुके हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से प्यार से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कनें ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चलें। देखो तुमने वादा किया था जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने भी हंसकर कहा, कौन मैं, तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, अब तो हम चलते हैं।

और फिर जब इबारत में जुम्मे की बात हो ही रही है और मिलने चलने की बात हो ही रही है, तो लीजिए सुनिए सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में ये गीत, फिल्म हमसे आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा कि मेरी तो कभी भी किसी के साथ बाग में मुलाकात हुई ही नहीं है। जिसे मैंने कहा हो जरा मेरे पास आओ और बैठो। हाँ, शादी के बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ कई बार बाग में खंडाला और लोनावला घूमने का मौका जरूर मिला है। बातों बातों में सुना और सुनाया भी है, तो प्यार तो होना ही था जो आज तक धर्मपत्नी के साथ कायम है। क्या बात है, आपने अपना अनुभव साझा किया है कि बातों बातों में किस तरह प्यार हो जाता है। तो चलिए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत। ये फिल्म नई अजनबी फिल्म है। उदित नारायण, अलका याग्निक, बॉबी देओल और अक्षय कुमार की आवाज़ें हैं। समीर के बोल हैं, अनु मलिक की धुन है। और शब्द है कौन मैं, हाँ तुम।

0: मैं
1: हाँ तुम
0: बस तुम
1: ओफो।
2: तो श्रोताओं, आज जिन गीतों को हमने शामिल किया था वो ऐसे ही कुछ संवाद वाले गीत थे। हिंदी फिल्मों के गीत केवल सुरों और शब्दों का जादू ही नहीं होते, बल्कि कई बार उनमें छिपे संवाद भी उन्हें और खास बना देते हैं। कभी दो दिलों की मीठी नोक झोंक, कभी प्यार भरी बातें, तो कभी जीवन के अनमोल संदेश, ये संवाद गीतों में एक अलग ही रंग भर देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई कहानी हमारे सामने जीवंत हो उठी हो। आज की इस विशेष संगीत यात्रा में हमने ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए जो संवादों को अपने आप में लिए हुए थे। कहीं ना कहीं उनमें संवादों की खूबसूरत छटा बिखरी हुई थी। तो क्या आपको ये गीत पसंद आए? आप हमें बिल्कुल बताइएगा आपके इस पर क्या विचार है वो। और चलिए चलते चलते एक छोटी सी झलक सुन लेते हैं उस बहाने भरे गीत की जो देकर हमारी इबारत की नायिका भाग निकली थी। तो लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम आन मिलो सजना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
3: अच्छा।

और इसी के साथ हमारे भी चलने का समय हो गया है। आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लगता है इबारत की पहेलियां यूं ही सुलझाई जाए आपके साथ, मगर समय इजाजत नहीं देता। तो चलिए सुरीला सफर कार्यक्रम से अब नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

आज त्रिवेणी में धन की बातें होंगी। लोग ये समझते हैं कि धन का मतलब है रुपए, पैसे, गहने, जमीन और वस्तुएं, लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए सेहत रूपी धन को बचाइए। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है और ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान ही हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है, इसलिए ज्ञान रूपी धन को अर्जित कीजिए।

समय रूपी धन तो हम सबके पास होता है। दिन के 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, इसलिए समय का इस्तेमाल सोच समझकर और सही जगह पर करना चाहिए। समय रूपी संपदा को बुद्धिमानी से प्रयोग करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, योजना बनाएं और अनुशासन में रहकर समय को खर्च करें। अगला धन है मान सम्मान। हमें अपने मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपका सम्मान करना छोड़ दें या जरूरत पड़ने पर कोई आपकी सहायता को न आए। रुपए पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, पर गया हुआ सम्मान मुश्किल से ही मिल पाता है, इसलिए सम्मान रूपी धन को सहेजें।

धरती पर जितने भी प्राकृतिक संपदाएं या संसाधन हैं, वो भी ईश्वर का दिया हुआ धन है। पानी, खाद्य पदार्थ, खनिज, ये सब भी धन ही है। इनका हमें सही मात्रा में उपयोग करना होगा। अगर कहीं नल टपक रहा है तो उसे ठीक करवाइए, पानी को व्यर्थ मत बहाइए। भोजन जितनी आवश्यकता हो उतना ही बनाएं, भोजन को फेंकने से बचें। ईंधन का उपयोग सोच समझ कर करें। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल रुपये पैसे को ही धन ना समझें, बल्कि इसकी व्यापकता को समझते हुए इन दूसरे धन का भी संचय व समुचित उपयोग हमें करना है।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
3: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
4: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, तो सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
5: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
7: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
7: अमरावती नया शहर बन रहा है, तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
8: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांवों का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
9: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
10: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण

0: गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं छलिया फिल्म से मुकेश की आवाज, कमर जवलालाबादी के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अपना घर, इस फिल्म का गीत गीता दत्त और मुकेश के स्वरों में। प्रेम धवन के बोल हैं, रवि का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत भूत बंगला फिल्म से। हसरत जयपुरी ने इसे शब्दबद्ध किया है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: बहु बेटी फिल्म का गीत अब सुनिए। आवाज है मोहम्मद रफी की, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि का संगीत।

0: है काबू, हाय मेरी जान ना सता तू।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। फिल्म का नाम दो बदन, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, रचना शकील बदायूं ने की है और धुन बनाई है रवि ने।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार व सामायिक चर्चा रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का कीर्तिमान स्थापित करने की खुशी और उनकी दीर्घायु की कामना में आज प्रदेश भर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सोलन में भाजपा शहरी मंडल द्वारा इस मौके पर आयोजित हवन यज्ञ के बाद भारत सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण लाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कोरोना महामारी और पाकिस्तान के साथ युद्ध सहित खाड़ी देशों में संघर्ष जैसी विकराल समस्याएं आईं, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक देश को इन समस्याओं से उबारा।
1: आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रुतबा उन्होंने हासिल किया है और इन 12 सालों में आदरणीय मोदी जी ने देश को जो आर्थिक तौर पर मजबूत किया है, देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है, अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। ऐसा प्रधानमंत्री जिसके हाथों में देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी, तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आज पूरे देश मंदिरों में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
0: शिमला में भी इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ का आयोजन कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर भाजपा विधायक विनोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यकाल गरीब कल्याण के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि आज देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
2: आज शिमला के राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के दीर्घ आयु के लिए, वो स्वस्थ रहे, देश के करोड़ों लोगों की सेवा इसी तरह से करते रहे, उस संदर्भ में आज राम मंदिर में हवन और पूजा का आयोजन यहां पे किया गया।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे जन कल्याणकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। राज्यपाल आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर व निःशुल्क दंत स्वास्थ्य जांच शिविर के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने रेडक्रॉस द्वारा समाज के प्रति किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस मानवता की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा पीड़ितों व जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के साथ साथ करुणा और सामुदायिक कल्याण की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। राज्यपाल ने मोबाइल डेंटल क्लिनिक वैन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए और रेडक्रॉस सोसाइटी को सहयोग देने और वर्षों से नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए राजकुमार को सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव में आज से मिनी बैडमिंटन चैंपियनशिप आरंभ हुई। चैंपियनशिप का शुभारंभ उपायुक्त अनुपम कश्यप ने किया। ये चैंपियनशिप अंडर 11, 13 और 15 आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों के लिए आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में शिमला जिला से लगभग 180 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उपायुक्त ने इस मौके पर कहा कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रतियोगिता का आयोजन शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है, खासकर राज्य के मैदानी इलाकों में लोगों को जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। राजधानी शिमला में भी लोगों को दिन के समय जोरदार तपिश का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने कल 11 जून से राज्य में मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, उसके प्रभाव से 11 और 12 जून को राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होगी। विभाग ने इन दो दिनों के दौरान राज्य के 4 जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में कुछ स्थानों पर अंधड़, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार के बाद प्रस्तुत है सामयिक चर्चा, जिसका विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वाधिक कार्यकाल की ऐतिहासिक उपलब्धि। वाचक स्वर राकेश शर्मा का।
0: भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में 9 जून 2026 का दिन एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12 वर्ष तक देश का नेतृत्व करते हुए स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोदी आज देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, कूटनीतिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिनों का था। नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लगातार 3 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएं और नीतियां लागू की जिनका प्रभाव देश के करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया और अब 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के माध्यम से देश में विनिर्माण और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया। मोबाइल फोन निर्माण से लेकर रक्षा उत्पादन तक कई क्षेत्रों में भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। मोदी सरकार के सबसे चर्चित कार्यों में डिजिटल इंडिया अभियान शामिल है। आज भारत दुनिया में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अग्रणी देशों में गिना जाता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने लेन देन की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाया है। गांव तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ने से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने, आधार और जनधन खातों को जोड़ने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से करोड़ों रुपए की बचत हुई है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी मदद मिली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार आया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को पक्के घर मिले। आयुष्मान भारत योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में सड़कों, रेल मार्गों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई। एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेनें, नए एयरपोर्ट और आधुनिक रेलवे स्टेशनों का निर्माण भारत के बुनियादी ढांचे को नई पहचान दे रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सड़क और सुरंग निर्माण के कार्यों में तेजी आई है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इससे आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका को अधिक प्रभावशाली बनाया। लगातार 12 वर्ष तक देश का नेतृत्व करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ी उपलब्धि माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने देश की राजनीति और शासन व्यवस्था की दिशा में प्रभावित किया। समर्थकों के लिए वे विकास, निर्णायक नेतृत्व और परिवर्तन के प्रतीक हैं, जबकि आलोचक उनकी नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 12 वर्षों से भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु नरेंद्र मोदी ही रहे। इतिहास के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन नेताओं की श्रेणी में दर्ज हो गया है जिन्होंने लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते हुए भारत के विकास और वैश्विक पहचान को नई दिशा देने का प्रयास किया। आने वाले वर्षों में उनके कार्यकाल की उपलब्धियों और चुनौतियों का मूल्यांकन इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक करते रहेंगे, लेकिन वर्तमान समय में इसे निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले

0: तो नेहा मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊँ।
0: और हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लिखते हैं, इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर। और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: पर वो बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र हैं या आंखों में रोशनी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है ना? इन्हीं के माध्यम से तो हम इस सुंदर संसार के रंग रूप और विविधता को देख पाते हैं।
0: बिल्कुल। और किंतु अनेक लोग ऐसे होते हैं नेहा, जो दृष्टिहीनता के कारण इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सबसे सरल और महान माध्यम है नेत्रदान। और नेत्रदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकाल कर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अब सोनाली जी, यहीं आपको थोड़ा सा रोकूंगी और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली हूँ
0: जी।
1: अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता जब तक, हाँ, जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती है तब तक। अब ये हमें पता नहीं था, चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने एक ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है, तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पे रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते। तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय लेकिन वो काम नहीं आ पाया, तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया है, तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना कहीं और शिफ्ट किए या फिर कहीं बर्फ पर रखे बिना डॉक्टर को बताया जाए कि इन्होंने नेत्रदान किया है, ताकि अगली कार्रवाई की जा सके।
0: ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि भाई मुझे नेत्रदान करना है, और गलती से अगर उन्हें बर्फ पर रख दिया तो अगर उन्हें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई तो हमें बहुत बुरा लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और नेत्रदान केवल दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
1: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लगभग सभी धर्म इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
0: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है, नेत्रदान महाकल्याण। बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
1: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने उसकी सूचना दी होगी तो उनकी भी आंखें ले गए, और क्योंकि वो पहले से अपनी आंखें दान कर चुके थे तो इन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी। तो ये एक अच्छा कार्य था,
0: बहुत अच्छा कार्य किया है। और मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथी ने लिखा, नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें इस संसार की सुंदरता देखने का माध्यम है। मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
1: एक साथी लिख रहा है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए आज नेत्रदान दिवस है तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।

0: सोनाली जी, बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखा है, नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। मैं खुद नेत्रहीन हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आँखें नहीं होती हैं। इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे। आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं, और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर हैं। तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: नेत्रदान कर
0: करें।
1: सके। और मुझे ऐसा लगता है इनका कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी, ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख
0: देख
1: सके।
0: सकें,
1: और जब भी
0: बिल्कुल।
1: खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ, और साड़ी में
0: साड़ियाँ
1: जो स्त्री का सौंदर्य है ना, और भी
0: झलक उठता है।
1: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है, तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है। ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित है। अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरी कारी के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है।
0: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है। चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई। कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था।
1: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी। उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है, जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है।
0: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं।
1: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार, जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है ये साड़ियाँ, साथ ही चंदेरी कॉटन। अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज़्यादा नरम साड़ियाँ पसंद है, तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियाँ पहन सकते हैं जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है। साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है, और जरी युक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है, यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है।
0: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
1: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी
0: ओहो
1: साड़ियां
0: क्या बात है, क्या
1: हैं।
0: बात
1: मुझे
0: है।
1: शौक है तो पहनती हूँ, और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके। और कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है, और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं, उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है।
0: क्या बात है। चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं। पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी। आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
1: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
0: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: और जैसे
0: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ ना मिलना, ऐसे कई कारण हैं।
1: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले,
0: बिल्कुल।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली। और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है, और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं, और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारी दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: ओ हो हो हो लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा नियम,
0: बहुत अच्छी बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना नेहा। कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
0: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
1: हाँ, सच कहा आपने।
0: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है, तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है, इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोले कि अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है।
1: हाँ।
0: कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही, और एक इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहिणी अक्सर असमंजस में पड़ जाती है। कि किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए, ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है। इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
1: अरे बाप रे, दिल की बातें निकल रही हैं सोनाली जी।
0: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीठ बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहा कर निकलते।
1: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बिटिया रानी सलाद से रोटी खाई, ये सब्जियां नहीं होना जैसे कद्दू बैंगन गिलकी लौकी, उनके गले नहीं उतरती, श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, मुझे जो मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
0: डेवलप हो जाते हैं।
1: हाँ वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझकर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है उसे क्या देना, तो नहीं वैसा नहीं,
0: उसे करेला भी दीजिए,
1: उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
0: और हम ऐसे कहते ना कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो,
1: हर
0: आप जो खाते
1: थोड़ी
0: सब थोड़ी थोड़ी दो। हाँ अगर उसने मना किया बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं इधर, हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और स्वाद कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल सुनवाइए और बढ़ाइए स्वाद,
0: सुनते हैं।

रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो और रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरे नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने
1: बहुत अच्छी
0: समझदार
1: बात है,
0: इंसान है।
1: ऐसे लोग घर में होना चाहिए।
0: हाँ, तो घर की जो गृहणियां हैं वो बड़ी खुश होगी, है
1: हाँ।
0: ना।
1: अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़
0: संवाद को।
1: दिया। हाँ वही।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है, इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल की उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो, पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है।
0: जी
1: सोनाली जी, सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना।
1: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं, इसलिए
0: अभी
1: ऐसी।
0: मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी, और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी, मैं वही खाऊंगी। क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डला होता है उसमें, और
1: सादे होते
0: उसमें
1: हैं।
0: टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज़ फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं, जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
1: सोनाली जी, मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब
0: जब
1: आप
0: हम
1: उन्हें
0: देंगे,
1: चखाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा
0: चलेगा।
1: कि ये चीजें कैसी लगती हैं। तो
0: तो ये
1: जैसे
0: थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे,
1: हाँ
0: और
1: ये तो
0: दोस्त सहेली
1: है।
0: ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको। तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हतबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतूं, घर में चार लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है। छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है। घर के नखरे भले ही हजारों, लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए, बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है।
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है।
0: और एक साथी लिखती है, तो हर घर की समस्या है, घर में लोग चार, खाने के नखरे हजार, पूछिए मत। मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गृहणियों को बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते हैं कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं। कभी कभार तीज त्यौहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत नसीब वाले
1: हाँ
0: हैं।
1: सच में। एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को, कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है, तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे। आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है।
0: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा। जब हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे से संवाद रखेंगे, तो भी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है, तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है, रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले। ऐसा नहीं, बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथी लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वो है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता, स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है। संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो। जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए। बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं, संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए, उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी, अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है, और कभी कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग, कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
0: या फिर खाना तैयार है कि नहीं, हम आए क्या डाइनिंग टेबल पे, इस तरह से इन्हें मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया। और वो गृहणिया है जो, वो भी मैसेज लिख देती है, हाँ हाँ खाना रेडी है, आ जाइए।
1: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
0: और आप क्या करें?
1: गाना सुन लेते हैं, संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है,
0: तो चलिए गाना सुनते हैं।

0: तो सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में, और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से व्यंजनों को अलग तरीके से बना के। मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोश्तो सब्जी। ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छील कर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंचफोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें, बचे हुए तेल में पंचफोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें। इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भुने जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसें।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही है ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: बहुत
0: चाहिए।
1: टेस्टी हो गया ना। एक हमारे साथी ने लिखा है, सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है, फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है। पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
0: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है, अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है, और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
1: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना उड़द जो आपको पसंद है, बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दें, बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल लें और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दें, मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी इन सभी को पीस लें और कढ़ाई में तेल डालें, 5 फोड़न का तड़का दें, बैगन को भून कर निकालें। अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून लें। अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर लें, पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दें, थोड़ा पानी डाल दें और उसमें धीमी आँच तक पकने दें, इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियाँ ज़रूर बनती है, पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती, मिर्च, लहसुन, हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं, और आप क्या करें?
0: गीत सुने
1: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़े मजेदार बात कही है। उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो, काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखे स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें
1: तो यानी कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है। बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में।
0: हाँ।
1: तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख पाता
0: है।
1: अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम और सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का
1: नमस्कार।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। साय के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं, उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
1: रेडियो की तरफ,
2: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ, तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहाँ से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय मैं इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूँकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा।
1: जी, रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से रिश्ता है ही।
2: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
2: की स्मृतियां हैं मेरे
1: जी
2: पास।
1: जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
2: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
2: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
1: जी,
2: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था
1: जी।
2: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
1: जी।
2: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: जी जी जी।
2: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहाँ खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव्य की भांति मैं वहाँ से चला जाता था।
1: क्या बात है।
2: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहाँ मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते थे तो निराला जी रहते थे,
1: अरे वाह,
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे,
1: गजब,
2: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था
1: जी।
2: तो, या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाएं, कुछ भी कर पाएं, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाई चिंतामणि, और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है
1: जी जी,
2: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है, एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है
1: जी,
2: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और

0: और उसको स्वर दे सकते हैं।
1: जी
0: तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था,
1: जी
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है, तो वो परिवेश का असर क्या होता है? एक असर होता है परिवार का। तो मेरे
1: जी जी
0: परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था,
1: अच्छा
0: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई दूर
1: संबंध
0: दूर
1: नहीं
0: से
1: होता है। जी
0: रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है वो भी चीज़ें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूँ।
1: जी जी क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूँगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी परी के वरदान,
1: जी
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुँचा
1: हाँ
0: तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पराग के संपादक थे, मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी
1: 3 पेज
0: और
1: की
0: तीन पेज
1: चिट्ठी
0: की चिट्ठी,
1: सर्वेश्वर जी के
0: और हाँ
1: पास।
0: उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, और जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा तो फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा,
1: लिख
0: और जो जो मेरे दिमाग में आया मैंने सब लिख
1: डाला।
0: दिया। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा, मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई? तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है, मैंने कहा नहीं, लौटाई, बोला कि तू कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझे पास ऐसे ही दे दी, तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित, उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने
1: प्रयास
0: इतनी कम
1: किया।
0: कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ, तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है।
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहाँ रहा हूँ,
1: हाँ
0: तो वहाँ के पानी में कुछ ऐसा है तो
1: कि
0: वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है, और
1: हाँ
0: कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊँ तो मुझे खुशी होगी, और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूँ जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी। तो
1: क्या
0: वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी
1: बात
0: बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे।
1: है।
0: लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है,
1: बिल्कुल।
0: इनकार की एक भाषा होती है वो भी आपको ऊर्जा देती है, तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है, और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर।
0: नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे, और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी, और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की
1: के
0: प्रस्तुति थी,
1: प्रस्तुति
0: तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या?
1: से
0: तो मैंने कहा कि नहीं, तो

0: बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा,
1: हाँ
0: चोरी मत करना, उस पर
1: हाँ
0: कानूनी कार्रवाई होती है। किस बोले अच्छा ये बताओ, ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो
1: हाँ
0: मैंने कहा नहीं नहीं लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया।
1: हाँ
0: उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया, तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीज़ें। तो मैं कह रहा हूँ कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी। आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूँ उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो कैसे जीवन चलेगा
1: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे बड़ी
0: चलेगी।
1: सोच।
0: तो ये आजीविका के भय में, चीज़ों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा, लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा।
1: जी
0: सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए, अपने को एक्सप्रेस करते करते
1: जी जी
0: वो एक गवैया बन जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो
0: लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। ख़ास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
0: 3 लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और वो मुझे मिला नहीं।
1: अच्छा।
0: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी। मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक। और
1: अच्छा।
0: शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता। तो वो कहानी छप गई, तो
1: हाँ
0: उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो
1: हाँ
0: उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया।
1: हाँ
0: तो उसने कहा कि शिवा मयंक कौन है जो पोस्टमैन है? मैंने कहा मैं हूं। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो? मैंने कहा हाँ। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप, ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूँ, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए। मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को, उस पत्रिका को वापस कर दिया।
1: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक
0: हाँ,
1: ओहदे
0: जो
1: पर हैं।
0: कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीज़ें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई, कैसे हुई, मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ, तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15 के अनुपात में सुर में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है, तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रोमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी
1: जी।
0: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूँ। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
1: जी। तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
0: संग्रह वाली कविता एक
1: दो लाइन सुनाइए।
0: एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है। तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के पे जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी
1: जी,
0: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था। तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली। और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ, और मैंने क्लास रूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया। वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी जी।
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc पार्ट 1 में रहा हूँ तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी, आप अगर सुनाए हमारे को तो 4 लाइन,
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: ओह गजब।
0: घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह।
0: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल हैं, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है।
0: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
1: वाह।
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंदर, सुमन की तरह।
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहाँ सांस ले रहा था, वहाँ कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे।
0: जी,
1: तो
0: दुष्यंत कुमार,
1: दूसरी
0: साये में
1: चीज,
0: धूप उनकी
1: हाँ,
0: बड़ी
1: साये में धूप।
0: मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग्य लिखता था, तो व्यंग्य में एक खूबी होती थी, व्यंग्य में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग्य बोलते हैं, व्यंग्य कहते हैं, व्यंग्य करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं, फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं
0: हाँ,
1: तो व्यंग्य नहीं
0: अनकहा
1: उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा।
0: अनकहा
1: तो एक
0: सर।
1: अनकही चीज़ को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है, कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर
0: क्या बात है,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह
1: तो
0: वाह।
1: अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूँ, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए,
0: जी
1: तुमने पाया हमने खोया। अब
0: जी
1: अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह
1: तो
0: वाह।
1: अब ये जो खूबसूरती थी, इसने इंस्पायर किया। फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी,
0: जी जी
1: तो हम
0: जी
1: उनकी गज़लें सुन रहे थे, तो उन गज़लों में भी वो स्वाद था कि गज़लें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गज़लें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी, लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में, तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे,
0: जी जी
1: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर, उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो, और कविता का की जो रुचि है, ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज़ करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
0: जी, तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
1: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया,
0: जी
1: सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए,
0: जी
1: उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े। नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक
1: हाँ
0: जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनूदित हुआ, इसके
1: जी,
0: बारे में बताइए, इसकी
1: देखिए
0: क्या
1: नाटक
0: कहानी है।
1: क्या था कि मैं श्रद्धेय, मैं प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो,
0: जनसत्ता के संपादक थे उस
1: हाँ, तो
0: समय।
1: मैं
0: जी
1: जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी, तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहाँ शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से,
0: जी
1: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे, कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
0: जी
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं।
0: जी
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं, मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया तो एक उपन्यास मिला मुझे, लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
0: अच्छा अच्छा।
1: कि मैंने कि लंबी कविता में लिखूंगा, 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
0: जी जी।
1: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे। मैं उनके पास वो नाटक लेके गया, मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात

0: उनका उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्री की तरह है।
1: जी जी।
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
1: हाँ बिल्कुल।
0: इसका मतलब कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है,
1: जी जी,
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है।
0: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा
1: जी।
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, उनका आशीष था
1: जी
0: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था
1: जी।
0: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने
1: कहाँ पर था, किस
0: वेदा कुंभा थिएटर में।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
0: जी, 9 भाषाओं में अब तक
1: ये मराठी में भी
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
1: जी
0: इसकी, और कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
1: लोई नामकरण कैसे,
0: कबीर की पत्नी है उनका नाम है
1: जी। बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप
1: तुम घना साया। साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसिकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
1: जी क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है ये, इसमें एक कविता है मलाला यूसुफ जई के पिता पे।
0: जी जी,
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा।
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा परिदृश्य नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है, बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफ जई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफ जई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है, वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह
0: वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
0: वाह।
1: तो ये मलाला के लिए ये कविता। तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे, मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना और इसमें बहुतेरी

0: कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात ये कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं, और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई
1: जी
0: आपको
1: जी
0: मिलेंगे,
1: क्या
0: जो
1: बात है।
0: न्यूज़ के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज़ रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें
1: जी
0: दर्ज
1: जी
0: है।
1: क्या बात है। अगर 4 लाइन सुनाना चाहें तो सुनाइए।
0: तो एक कविता है आंसू की खबर।
1: जी सुनाए।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
1: क्या बात है।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
1: वाह वाह, मार्मिक कविता है।
0: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे,
1: ओह
0: एक माँ,
1: ओह
0: एक खबर।
1: ओहो, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए। बताइए कौन सा गाना सुनाएं अपने श्रोताओं को।
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाएं,
1: हाँ
0: पान खाएं सैया हमार, वो हो जाइए।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: और ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है, और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहाँ की यादें ताज़ा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए,
0: मतलब
1: मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: जी
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात
1: तुझे
0: है,
1: तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर है इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे हैं तो वहाँ भी ढूंढते हैं।
0: जी,
1: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: हम जो दिल्ली में भी रहते हैं, हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हांट करता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये है कि मैं पहुंच जाता हूँ जब
0: जी
1: हांट करता है या उससे पहले ही।
0: जी वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है
1: हाँ,
0: जहाँ आपका
1: क्योंकि
0: बचपन
1: आपको
0: बीता।
1: लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है,
0: जी क्या बात है।
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है,
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
1: देखिए,
0: पहुंचे?
1: पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके,
0: जी,
1: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं, वहाँ जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं,
0: बिल्कुल।
1: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
0: जी, तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको
1: नहीं,
0: या
1: बहुत
0: यहाँ
1: मजा किया। हम तो उस
0: सकारात्मक
1: समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो वो हमको देखते ही कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
0: जी।
1: हमने क्या कहा, उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम खा कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
0: कुछ करने
1: हम
0: आए हैं।
1: लगाने आए हैं,
0: जी बिल्कुल,
1: हम कुछ
0: क्या बात
1: बोने
0: है।
1: आए हैं, हम कुछ
0: सृजन
1: सृजन
0: करने
1: करने
0: आए
1: आए
0: हैं।
1: हैं।
0: जी।
1: तो हम इस भाव से आए। तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत, यह मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती, मेरे पास चीज़ों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास। तो
0: नजरिया।
1: अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते, आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
0: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे, क्या
1: पहली
0: क्या
1: बार
0: थी
1: हम
0: सीढ़ी आपके?
1: देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में मतलब अपने आप मैं स्टिंगर हो गया,
0: जी।
1: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गई, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली गंगा यमुना,
0: जी,
1: उसमें रविंद्र कालिया जी ने मुझे बुला के रखा, मैं
0: इलाहाबाद के।
1: अकेला ही पीर बावर्ची भिस्ती खर था उनके साथ,
0: जी
1: तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी।
0: जी
1: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा,
0: जी
1: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा, न्यूज़ एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ, तो टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
0: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है, अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर हैं कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सकें नया कुछ करने के लिए, तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
1: देखिए, फ़ायदा तो होता है, उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं
0: जी,
1: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज़्यादातर जो साहित्य उत्सव हैं ये आयोजक के उत्सव होते हैं
0: जी,
1: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो, उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है
0: जी,
1: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहाँ
0: जी,
1: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहाँ देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी
0: जी। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप क्या करना चाहते हैं?
1: सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं, हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है,
0: बिल्कुल,
1: या बहुत बेहतर रचा गया है, बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है, लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लिगेसी थी वो लिगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लिगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: कविता माने कविता नहीं रही
0: जी, जी,
1: तो अगर कविता माने आपकी कविता है
0: हाँ,
1: तो वो फिर प्रचार की कविता है, ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों

0: दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में संदेश दीजिए।
1: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशिएंट बैलेंस आएगा। तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीज़ें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
1: बहुत धन्यवाद नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में जन कल्याण पर केंद्रित सरकार की नीतियों का उल्लेख और प्रमुख जनसंख्यिकी समूहों के सशक्तिकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस

0: इसके साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभराए, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभराए। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनमें केंद्र सरकार के जनरल पूल कार्यालय आवास और जनरल पूल आवासीय आवास का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनडीए की बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री था गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध किया। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। ये प्रणाली उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग को बाधित करके और सिग्नल स्पूफिंग तथा भ्रामक जैमिंग करके दुश्मन के GNSS रिसीवर के प्रदर्शन को कम करने में सक्षम है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम के वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG और PNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हे शिव शंकर भगवान, आपका गुणगान तो तीनों लोक करते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम सब पर बरसती रहे।

अभी आप सुन रहे थे कुछ गैर फिल्मी भजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

0: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। युवा साथियों हाजिर हैं कार्यक्रम युवा मंच के साथ और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। और आपको ये बता दें कि आज हमारे साथ एक मेहमान भी हैं, तो उनका नाम भी आपको बताती हूं। तो उनका नाम है सेजल। सेजल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैम। पहले तो मैं आकाशवाणी की पूरी टीम का धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का अवसर दिया।
0: जी, और अच्छा लगता है जब आपकी बात हर कोई सुन रहा है ना सेजल।
1: हाँ जी मैम।
0: और क्या करती हैं पहले तो ये बताइए सेजल आप।
1: मैम मैं रीजनल सेंटर धर्मशाला खनियारा में MA सेकंड सेमेस्टर में पढ़ती हूँ। हाँ जी मैम।
0: और साथ में क्या करना अच्छा लगता है आपको सेजल?
1: साथ में स्टडी और उसके साथ साथ बुक्स रीडिंग
0: अच्छी लगती है आपको। और आज पता है आज हमारे युवा मंच में क्या चलता है?
1: हाँ,
0: किस विषय पर बात होती है?
1: हाँ जी हाँ जी, आज मुझे पता है कि आज खेलों के विषय पे बातचीत की जाती है।
0: हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो आप। हमारे साथ आज जिस विषय पर आप बात करेंगे वो है स्पोर्ट्स बीट्स, यानी हम खेल जगत के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ा सा मनोरंजन भी करेंगे हमारे युवा साथियों का। तो सबसे पहले आपका मनोरंजन और हमारे युवा साथियों का मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, ठीक है? फिर बात करेंगे।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जी हाँ श्रोताओं, हम बात करेंगे कि कौन सी खेलें आजकल ज़्यादा चल रही हैं और क्या कुछ हो रहा है खेल जगत में। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक युवा भी हैं। और सेजल, आपको गीत कैसा लगा पहले ये बताइए।
4: मैम, बहुत अच्छा लगा गीत, और साथ में मजा भी बहुत आ रहा है।
3: आ रहा है ना।
4: हाँ,
3: चलिए और भी मजा करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि आजकल पता है आपको कल से क्या होने वाला है, क्या शुरू हो रहा है।
4: हाँ जी मैम।
3: लग गया है आपको पता
4: जी,
3: है ना?
4: मैम,
3: तो कल से हमारा फुटबॉल प्रेमियों का जो वो रुझान जो है वो होगा फीफा वर्ल्ड कप पर। जी हाँ, हमारा जो विश्व कप है फीफा का, वो 2026 कल से आरंभ हो रहा है ना
4: जी मैम।
3: और इसकी मेज़बानी कौन कर रहे हैं? इसकी मेज़बानी कर रहे हैं अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। तो कल से फुटबॉल प्रेमियों के मज़े लग जाएंगे। वो जो अपना रुझान है इस खेल के प्रति दिखाते हैं, वो वहाँ पर जाकर पूरा लुत्फ उठाएंगे, है ना?
4: जी मैम, बिल्कुल।
3: और आपको भी अच्छा लगता है
4: मैम? बहुत अच्छा लगता है मुझे।
3: अच्छा, और कौन सा खेल आपको अच्छा लगता है?
4: मैम, मुझे फुटबॉल के अलावा शतरंज खेलने का बहुत शौक है।
3: अच्छा, शतरंज खेलती हैं आप?
4: हाँ जी मैम।
3: और कितनी देर तक आपका जो ये शतरंज का खेल है वो चलता है?
4: मैम, ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कब तक खेलने का मन करेगा।
3: चल, खेलने का मन करेगा या फिर जीतने का?
4: हाँ जी मैम।
3: जीतते कब तक हो, है ना?
4: जी जी मैम।
3: जब तक आप जीतोगे नहीं तब तक उस खेल को छोड़ोगे नहीं, है ना?
4: हाँ जी, जब हार जाते हैं तब छोड़ देते हैं।
3: चलिए, जीत और हार तो लगी रहती है, और अगर खेलेंगे तभी हम जीतेंगे या फिर हारेंगे, नहीं खेलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना?
4: जी मैम, बिल्कुल।
3: चलिए सेजल, अब आपको बताते हैं कि आजकल जो हमारे खेल में क्या क्या कुछ खास हो रहा है। तो आपको बता दें कि सृष्टि किरण बन रही है अंडर 13 टेनिस में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाली खिलाड़ी, है ना? और गायकवाड़ के शतक के साथ भारत ए जो है वो 8 रन के साथ उसने श्रीलंका को हरा दिया
4: जी
3: है
4: मैं।
3: और क्रिकेट की बात करें तो भारत के स्टार बल्लेबाज आप जानते हैं कौन है, विराट कोहली, है ना? तो उनको हैमस्ट्रिंग चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज से बाहर कर दिया गया है, उनकी जगह ली है यशस्वी जायसवाल ने। तो सेजल, आपको भी कोई खेल की खबरें हैं?
4: जी मैम, मेरे पास टेनिस से रिलेटेड एक खबर है। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि टेनिस के दुनिया में भी इन दिनों काफ़ी रोमांचक घटनाएं देखी जा सकती हैं। जैसे कि टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने लगभग 4 साल बाद प्रतिस्पर्धा टेनिस में वापसी की है और क्वींस क्लब चैम्पियनशिप में अपना पहला मुकाम हासिल किया है, तो ये काफी बड़ी बात है हमारे लिए भी। हाँ जी मैम,
3: बिल्कुल। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है
4: जी मैम,
3: वो खेल के प्रति जो उनका रुझान है वो बढ़ रहा है और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमें भी अच्छा लगता है जब किसी महिला या हमारी कोई साथी है उसका नाम आगे आता है, तो अच्छा लगता है ना?
4: जी मैम, बहुत अच्छा इस खबर के द्वारा हमें लग रहा है अभी। बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हम।
3: चलिए, अच्छी बात है। और आपको अच्छा लग रहा है तो आपकी खुशी और बढ़ाएं।
4: जी बिल्कुल मैम।
3: गाना सुनवाएं?
4: जी मैम।
3: चलिए, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारे दोस्त हमारे युवा सेजल। तो सेजल कैसा लगा गीत?
5: मैम बहुत अच्छा लगा गीत।
4: और भी न्यूज़ हैं आपके पास?
5: जी मैम बिल्कुल।
4: चलिए बताइए क्या न्यूज़ है अगली आपके पास?
5: तो मैम अगली न्यूज़ है मेरे पास बैडमिंटन की। तो मैं अपनी न्यूज़ बताऊंगी। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉम्स कप 2026 में कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और इस न्यूज़ से ना केवल हमारे पूरे देश को गर्व महसूस करना चाहिए, मैं तो बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि हमारे श्रोता भी इससे बहुत गर्व महसूस करेंगे क्योंकि ये एक राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की बात भी है।
4: जी बिल्कुल। और जहाँ राष्ट्र प्रेम की बात आती है तो सब भारतवासी एक हो जाते हैं।
5: जी मैम बिल्कुल।
4: और अब फुटबॉल की बात करें सेजल।
5: जी मैम।
4: फुटबॉल में लियोन मेसी जो हैं वो चोट से वापसी कर चुके हैं और विश्व कप की तैयारी में शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए हैं ना। और साथ ही साथ इंग्लैंड की टीम जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी कर रही है जिसमें जूड बेलिंघम चर्चा में हैं। और शतरंज की अगर बात करें तो विश्व चैंपियन डी गुरकेश और आर प्रगम्भा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में चर्चा में बने हुए हैं।
5: जी मैम।
4: तो हमारे जो खेल से संबंधित जो हमारे व्यक्ति हैं या हमारे जो दोस्त हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को सुन रहे होंगे कि कौन सी चीज़ कब आ रही है और कब हम इसका मजा ले सकते हैं, है ना।
5: जी मैम।
4: और आप भी इंतज़ार कर रही होंगी कि अगला गीत कब आएगा।
5: हाँ जी मैम।
4: चलिए कोई बात नहीं, आपको अगला गीत सुनाएंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉमर्शियल ब्रेक भी लेंगे हम, ठीक है।
5: जी मैम।
6: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्तें लागू।
0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
7: Nexa.

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम का समय जो है वो हो रहा है पूरा। तो सेजल, आपसे बात करेंगे कि कैसा लगा आपको आज का कार्यक्रम और यहाँ आकर।
1: मैम, सबसे पहले तो मैं फिर से यही बोलूँगी कि आकाशवाणी की पूरी टीम का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे ये मंच दिया और यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया। और सच में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आकर बहुत गर्व सा और खुशी महसूस हो रही है।
0: चलिए, आपकी खुशी यूं ही बरकरार रहे, हम यही आशा करेंगे। और आपकी पढ़ाई के लिए आपको विशेष साथ में देते हैं, आप फिर हमारे साथ जुड़िएगा कभी। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आप यहाँ पर आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी और आज के इस कार्यक्रम का विषय रहेगा फसल विविधीकरण। कार्यक्रम मौजा ग्राए दिए ये आप सुनेंगे 6:35 पर और आज के कार्यक्रम में बातचीत होगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर।

रात्रि 8:10 बजे सुनिएगा रूपक। और रात्रि 10:30 पर पुरानी फिल्मों से गीत सुनिए चित्रपट संगीत में।

आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। अब एक नजर डालते हैं आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों पर। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का कीर्तिमान स्थापित करने की खुशी और उनकी दीर्घायु की कामना में आज प्रदेश भर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सोलन में भाजपा शहरी मंडल द्वारा इस मौके पर आयोजित हवन यज्ञ के बाद भारत सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कई विकराल समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक देश को इन समस्याओं से उबारा।
1: आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रुतबा उन्होंने हासिल किया है और इन 12 सालों में आदरणीय मोदी जी ने देश को जो आर्थिक तौर पर मजबूत किया है, देश के सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है, अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। ऐसा प्रधानमंत्री जिसके हाथों में देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी, तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आज पूरे देश मंदिरों में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कार्यकाल के उपलक्ष्य में नादौन में भी भाजपा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार के नेतृत्व में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सिकंदर कुमार ने इस मौके पर

0: कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो महान संकल्प लिया है वो आज धरातल पर सही साबित हो रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी हवन यज्ञ में हिस्सा लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति की है और करोड़ों गरीबों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। बिंदल ने आज नाहन में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों तक पहुंची है और आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई कर देश को अधिक सुरक्षित बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 12 और 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। पंचायत समिति नाहन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने फिर से कब्जा जमा लिया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज हुए चुनाव में भाजपा समर्थित रमेश चौधरी अध्यक्ष और माया देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। नाहन के एसडीएम राजीव सांख्यान ने बताया कि चुनाव में 15 में से 11 सदस्यों ने हिस्सा लिया और चुनाव सर्वसम्मति से हुआ।
1: पंचायत समिति नाहन के लिए अध्यक्ष पद के लिए श्री रमेश कुमार करकरण ग्राम पालियों को निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष किया गया और उपाध्यक्ष पद के लिए माया देवी पत्नी अशोक कुमार ग्राम बलसात ग्राम पंचायत कोलामाला भुगतो पंचायत समिति नाहन का निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया और उसके बाद विधि के अनुसार दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संविधान और सत्यम शपथ दिलाई।
0: इस मौके पर नव निर्वाचित पंचायत समिति अध्यक्ष रमेश चौधरी ने कहा कि वे सभी सदस्यों के सहयोग से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के पास सरकारी भूमि पर बसे दुकानदारों और अन्य काम करने वाले 113 परिवारों को 16 करोड़ 76 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि ये पहला ऐसा मामला है जहां सरकारी भूमि पर कारोबार करने वालों को सरकार भूमि अधिग्रहण करने के लिए सहायता राशि प्रदान कर रही है। पठानिया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद वर्गों के लोगों की मदद करना है ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें। उन्होंने ये भी कहा कि इन परिवारों की मदद कर मुख्यमंत्री ने गरीब लोगों के प्रति अपने संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए गूगल फॉर्म माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी है। कुल्लू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल तिवारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के पक्षकारों के लिए आपसी सहमति से विवादों के समाधान का ये एक सुनहरा अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहन जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथियों आज ट्याले पर पंच ता पंच जी राम राम।
1: राम राम बड़का चाचू जी कने कार्यक्रम खेती बाड़ी सुना कर दे सारे किसान भाई बहन जो भी पंच की तरफा दे राम राम। और दिखा हाँ ट्याले पर जड़े से आए गए और कार्यक्रम है खेती बाड़ी, इस बीच हाँ खेती बाड़ी दे संबंधी जड़ी से गलबात करनी है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कने दिखा पंच भाऊ की गर्मी का जड़ा असर के भी दिन पर दिन के भी बड़ा करता है ना।
1: बिल्कुल,
0: और बड़ा जड़ा एक बांका काम के यहाँ कितने की ट्याले पर मतलब जड़ा ए घड़ा रखे ना पानी का।
1: हाँ
0: भैया पहले था आई के मैं पहले ना भाई दो घुट में दो गिलास में फटोफट ठंडे पानी दे पी लेना
1: जी,
0: क्योंकि कुआलू था तो जो पता ही भी चढ़ना पौंदा तो हाँ था ऊपरे दे आए ना है ना।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो मेरा तो थोड़ा साह भी फुल गया पर मिले भैया दिखा था हाँ मतलब ये चंद दिन की जेड़े भी मतलब जी हाँ हूँ ग्रां घर ग्रां हो गए है ना।
1: हाँ जी
0: ट्यालू पर जड़ा ये घड़ा के भी बड़ा भरी जरूरी है। और देखा कि आंदे जाते लोग
1: जितने
0: जी
1: भी हैं
0: है ना गर्मी के मौसम च जिया जी दो दो पैड़े घोंगे तो भी मतलब साह फुली जाता और जिया सियाने बजुर्ग कई चले होंगे न।
1: हाँ, और दिखा तो हाँ कने कने हाँ जो अपने बुजुर्गों का भी जेड़ा से आशीर्वाद है और उन्हों का दिखा लगाए पेड़ जेड़े इनसे ट्याले पर है ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: इस दी छां और कने कने ये घड़े का पानी इसका एक अलग ही आनंद है ना।
0: जी जी जी जी
1: और
0: जी
1: साढ़े घर ग्रां बिच भी जेड़े से जगह जगह हाँ दिखते कि ट्याले लगे होंगे और उत्तु जेड़े ट्याले दे बिच जेड़ा से पेड़ होंगे है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो ये सारी चीज़ा साढ़े बुजुर्गों की देन और इन्हों की सांभ संभाल करना साढ़ा जिम्मेवारी बनती है। और ये सारिया चीज़ा सजो जलू सिंझ के वक्त हाँ सारे कठूंदे ना ट्याले पर तिस्ते जेड़ा से सजो अपने आपसी गलबात करने का और दिन भर हाँ क्या खेतीबाड़ी के काम कार किते तिना सारी चीज़ा जो साझा करने का जेड़ा एक स्थल स्थान होंगे ट्याला ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो इस दे कन्ने कन्ने हाँ थोड़ी जी गलबात जी अपनी खेतीबाड़ी दे बारे च भी करनी है
1: जी।
0: तो दिखा कि असा दा जेड़ा किसान साथी के भी तरह तरह दी खेतीबाड़ी के भी करदा है ना।
1: हाँ जी
0: और विज्ञानिक विधिया कन्ने भी करदा है और जिया कि असा कि दूगे कन्ने अपने अनुभव जो साझा करदे न तो उसते भी जेड़ी मती सारी गल्लां बातां कन्ने भी सीखदा है।
1: जी
0: तो दिखा कि पिछे दे मैं जिया ग्रां जो गया हा
1: अच्छा
0: तो ये गप सप लई पे साढ़ा कोई सियाणा बजुर्ग था
1: हाँ जी
0: बोले कि दिखा भी इस बारी मैं मतलब जिया कि मक्की की बिजाई की है मक्की की बिजाई के कन्ने कन्ने मैं रौंग भी बाही तीन भाई
1: अच्छा
0: और इस दे कन्ने कन्ने मैं जिया कि खीरे वाली फसल लाई तीन
1: हाँ जी,
0: तो मतलब तीन चार फसल कहने भी मैं किट्ठी लगाई दी तीन।
1: यानी कि बरसात च आने वाली जड़ी फसलें से सारियां लगाई थी है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब थोड़ी थोड़ी जिया पौधे की दूरी रखी है
1: हाँ हाँ
0: पर फसल मैं लगभग बोले तीन चार लाई तीन। मैं लिया तो ये सियाण जी एक क्या गल है
1: हाँ
0: बोलिया दिखा कि अजकल अहाँ मतलब जिया रेडियो भी सुनते हैं
1: हाँ जी
0: है डॉक्टर की गलबात भी सुनते हैं
1: जी
0: तो उस दस्या जाता है कि कई बार क्या होंगे कि ये बरसात का मौसम है कई बार ज़्यादा बरखा होंगी है तो फसल खराब भी हो जाती कई बार कीड़ा बीमारी लगी जाती
1: जी जी
0: तो बोलिया भाइया मेरी एक फसल अगर खराब हो जाएगी ना तो
1: हाँ
0: दूई फसल तो मेरी बाकी रहनी है
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: ये बड़ी अच्छी गल दसी देना है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो दिखा कि मतलब इस गल्ला दे क्या गल सामने आ करदी कि असा दा किसान कितना जागरूक हो गया कि उसी पता है कि मतलब भी अगर मुझे 21 फसल दे नुकसान हुआ करता तो दुई फसल दे उस नुकसान दी भरपाई भी हो सकती है।
1: और इस दे कन्ने कन्ने और भी इस दे कई सारे फायदे हैं जी हैं कि हाँ गलांदे रहेंदे ट्याले पर कि फसल भी दिखाने जड़ा सा हाँ जो करना चाहिए है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: रली मिली के जड़ा सा कुछ एक फसल जो लगाना चाहिए ताकि साड़ी जी मिट्टी है दी उपजाऊ शक्ति है ना सह बनी रहे है ना।
0: जी जी
1: क्योंकि
0: जी जी
1: एक जी फसल होंगी तिस दे जड़े तत्व होंगे मिट्टी च सह मौजूद होंगे पर तिसते क्या होंगे कि अगर हाँ बार बार एक ही फसल लगाते रहेंगे तो तिसते सह तत्व जड़े से खत्म हो जाते हैं है ना।
0: जी जी जी,
1: तो तिस दी भरपाई वास्ते हाँ जड़े से अलग अलग जी फसल लगाते हैं तिसते कि एक फसल की तत्व की जी कमी से दूजी फसल जी से पूरे करी है ना।
0: बिल्कुल, कहने देखा कि सजो जी कि पहले क्या होंगे कि जी अहाँ गेहूं की फसल लगाते थे
1: हाँ
0: है ना
1: जी
0: धान की फसल लगाते थे इन्हों पर ही सारा जोड़ा दारोमदार के भी निर्भर रहता था।
1: जी
0: लेकिन जी कि मतलब जी हूँ अहाँ नकदी फसल लगा करते हैं सब्जियां की खेतीबाड़ी भी करा करते हैं दलहन हो गया तिलहन हो गया
1: हाँ जी
0: इसते मसाले वाली फसल भी यहाँ लगा करते हैं तो दिखा कि और एक गल है कि जी बाजार कुना कुना चीज़ा की ज़्यादा मांग है उस हिसाबे ने भी साड़ा किसान अपनी फसलों का जो चुनाव के भी करता है।
1: हाँ बिल्कुल बड़का चाचू जी, तो ठीक लाया क्योंकि अहाँ जो जड़ा सा हूँ थोड़ा बाजारीकरण की तरफ भी जड़ा से दिखना पौधा और अपने मुनाफा भी जड़ा से दिखना पौधा कि अहाँ जो कुछ फसल ने जड़ा से कितना की फायदा जड़ा से होने वाला है ना। तो इस वास्ते अहाँ जो नज़दीकी दे जड़े बाजार होंगे या फिर साढ़े जड़े गाहक न साढ़े घर ग्रां बिच कौन कौन गाहक और कुसा कुसा फसलों की जी से मांग करा करते हैं ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इस हिसाबे ने जड़े से अहाँ जो अपनी फसलें जी से लगाना चाहिए।
0: बिल्कुल कहना है दिखा कि कुछ फसलां साड़ी ऐसी होंदी न कि ज़्यादा पानी की मांग रहती है
1: हाँ
0: और कुछ फसलां ऐसा होंदी कि घट पानी च भी उन्हां दी पैदावार के भी ज़्यादा होंदी है,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो इसते पानी की भी बचत होनी है।
1: हाँ जी
0: और इसते सानू जिहड़ा लाभ भी मिलना है, कहना साड़ी जिहड़ी लागत के भी से भी घट लगनी है
1: जी।
0: तो सानू सारे जो रली मिली के ये जिहड़ा मिश्रित खेती भी अहां बोली सकते हैं या फिर फसल विविधीकरण भी अहां बोली सकते हैं, अगर इस दी तरफ साड़ा किसान आऊंगा तो एक अच्छा जड़ा मुनाफा के भी इसे कमाई सकता है।
1: जी जी
0: और दिखा कि भी इसे एक ग्रां दा रहने वाला सियाणा है, कितनी तिनी एक बांकी गल बोली कि भई मैं तीन चार तरह की जड़ी
1: फसलां
0: लगाई थी।
1: हाँ जी
0: और उसके अलावा अलावा जी है कि मतलब ग्रां च घर ग्रां च तो हां जो पता है कि अपने डंगर बच्छू का जड़ा गोबर के भी खाद के भी बतेरी हो जाती है
1: जी जी
0: है ना। तो बड़ी बाकी गल है कहना आशा करते हैं कि असा दे जड़े किसान भाई कहन भी अगर फसल विविधीकरण जो अपनांदे न तो एक अच्छी आमदनी कहन भी इसे कमाई सकते हैं
1: जी।
0: तो गल्लां बातां किसान साथी असा दी अगे भी जारी रहनी ने, पुराना शामिल करना एक प्यारे दे लोक गीत, तो सुनते ने लोक गीत
1: जी।

0: जी तो किसान साथी इसी प्यारे दे लोक गीत कन्ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी दसवें इतों ही संपन्न होंदा हुण सांझ दुनी जोधिया अनुमति
1: अच्छा जी जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:35 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां।
1: कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां सुनकर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहन जो बड़का चाचू दी तरफा दे राम राम। किसान साथियों ट्याले पर नमन जसो की पांच दा पांच जी राम राम।
2: राम राम बड़का चाचू जी, कने कार्यक्रम सुना करदे सारे श्रोतियां जो एक बारी फिरी ते पांच दी तरफा ते भी राम राम।
1: बिल्कुल, कने किसान साथियों हां दोनों ट्याले पर आई पुज्जे न जी, ता पांच जी दिखा कि ए जेड़ी पिछले कल ना
2: हां जी
1: ए ट्याले दे बड़े परले पासे भाई आग लगी थी है।
2: अच्छा,
1: और मतलब इतनी भयंकर आग लगी कि बल्ले आखे बखे मंदिर भी था और गुणखे उथु जगराता भी बल्ले मतलब
2: रखे था
1: और उस चक्र च बड़े बड़े लोग के भी किट्ठे हो गए थे।
2: अच्छा जी,
1: तो देखा कि भाई लगभग बोला करते हैं कि भाई 400-500 जेड़े माणू कहने भी उतू आगी दी मतलब फंसी गए मतलब।
2: हाँ जी,
1: तो देखा कि अहाँ मतलब ट्याले के माध्यम कहने ये आग्रह करते हैं कि देखा अगर कोई भी ऐसा शरारती तत्व तुम जो पाया जाता है कि जेड़ा भी जंगला च आग लगा करता है तो तुसा सीधे जेड़े अपने पंचायत के जेड़े प्रतिनिधि हैं उन्होंने सोगे भी उन्होंने शिकायत करी सकते हैं और या फिर जेड़ा अपना फॉरेस्ट महकमा है उन्होंने सोगे भी उन्होंने तुहां शिकायत कैन भी करी सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जो जेड़े से लगातार जेड़े से जागरूक रहना और अपने नज़दीकी दे जो भी जंगल उन्हें पर जेड़ी सा हाँ नज़र रखनी है और ऐसी कोई घटना घटती है तो हाँ दे जेड़े संबंधित विभाग ने जिवें वन विभाग हुई है, पुलिस विभाग हुई है या फिर अग्निशमन विभाग ने है ना जी, उन्हें कन्ने जेड़े से संपर्क तुरंत साधना और जेड़े से इस जो बुझाने वास्ते जेड़े से तुरंत उपाय जेड़े इनसे करने ने है ना।
1: बिल्कुल, कहना देखा कि सांजो ग्रां दे मानू जो ही जागरूक होना पौना कि है कौन ऐसे कौन जेड़े शरारती तत्व ने
2: जी।
1: कई बार क्या होंदा कि जियां घूमना फिरना भी आ जांदे लोक
2: हां जी हां जी,
1: ज्यादा करी जंगलों की तरफ रुख करते हैं तो सांजो बिल्कुल जेड़े ग्रां दे मानू जागरूक हो के सतर्कता बरती के नज़र रखना चाहिए कि कौन बंदा जानबूझी के लगा दा गया फिर अनजाण च लगा कर दी है
2: जी जी।
1: तो अहाँ अगर जागरूक होंगे ना तो ही ये जी मतलब चीज़ा जो अहाँ कहने भी बचाई सकते हैं क्योंकि देखा कि जंगलों च कई तरह के जेड़े जीव जंतु कहन भी रेंदे हैं है ना
2: जी जी,
1: और उन्हें जो काफ़ी जो नुकसान के भी पुजता है तो जरूर अहाँ सारे जागरूक हो के मतलब इन चीज़ों पर के भी रोक लगानी है।
2: हाँ जी, तो अहाँ की जी गलबात है लगातार जारी रहनी है पर हूँ हाँ सुनना एक प्यार दे लोकगीत
1: जी।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं।
3: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
4: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
1: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: किसान साथियों, लोकगीत और संदेश के बाद उन्हें अगली गलबात की तरफ चलना है।
6: जी तो दिखा तुम अजकल साढ़े जेडे भेड़ पालक बकरी पालक भाई ने जेडे से उपरी क्षेत्र जेडे से रुख करा करते इन दिन च ना।
5: जी जी जी जी,
6: क्योंकि साढ़े जेडे खासकर बुद्धौलाधार पहाड़ी ने इन क्षेत्र जेडे से परले चंबे दे साइड जेडे से जा करते हैं और उस बिच जेडे से उन्हों का जेड़ा जीवन है एक अद्भुती अलग जीवन जेड़ा से मन्ने जाता है ना।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: काफ़ी परिश्रमी और जेड़ा से कठिन जीवन जेड़ा से इन होता, क्योंकि ये गाय की जी मांग होंगी है बकरियों वास्ते भेड़ा वास्ते उसकी अनुसार जेड़े से जगह जगह घूमते रहते हैं ना।
5: जी जी,
6: और उसी पर ही जेड़ा से अहां दे जेड़े अजकल भेड़ पालक जेड़े इनसे अहां दे चंबे दे साइड लाहौल दी साइड जेड़े इनसे जा करते, जिस बिच अहां दे दौलाधार दे बिच जेड़े से इंद्रार पास है इंची जाते हैं ना।
5: जी जी,
6: इहदे कन्ने जालसू पास ये जेड़ा साढ़े जेड़े बैजनाथ दे परे होंदा है ना, उत्थों दे सीधे जेड़े से चंबे जाते, कन्ने थमसर पास है, कुगती पास है, इन सारे पासा च क्रॉस करके जेड़े से चंबे पहुँचते हैं है ना।
5: जी जी,
6: चंबा जिला च
5: उत्थों
6: दे कई जेड़े से भेड़ पालक चंबे दे तसे अपनी अपनी धारा च उत्थों रहिंदे ने, और कई भेड़ पालक जेड़े से होर अग्गे चली जाते जियां लाहौल जिले च चली जाते अग्गे, तो तिथू भी जेड़ा से तिना जो काफ़ी सारे जेड़ा तिना दा समय ऐसा सफर च गुजरी जाता, उस बिच हाँ लगभग जेड़ा से 1-1.5 महीना जेड़ा से तिना दा सफर ही चली रहा, यानी कि इतों के जलू तिना चलना ना
5: कांगड़े
6: से, तो लाहौल तक पुजते पुजते तिना 1.5 महीना लगी जाता लगभग।
5: जी जी,
6: तो हाँ गल करिए अगे इन जेड़ा सफर है चंबे ते लाहौल जिले की तरफ, तो इस बिच भी जेड़ा से कई तरह के जेड़े पास तिना जो क्रॉस करना पड़ते, जिं कि कुगती पास होई आ, डुगी जोत है, शिफ्टिंग पास है, काली शो पास है और चौबिया पास है। इस बिच ये जड़ा चौबिया पास है ना, ये बड़ा मशहूर है मणिमेज दे कन्ने ना,
5: हड़सर
6: दे उपर टपदे न गां जड़ा से चौबिया पास होंदा, था ज़्यादातर भेड़ पालक जेड़े से इसी पास च जेड़े से क्रॉस करके पील पंजाल जड़ी पर्वत श्रृंखला तिस जो क्रॉस करके अगे सीधे लाहौल पुजी आते।
5: जी जी,
6: काफ़ी मतलब कठिन इन्हों का सफर रहा और इस बिच जेड़े से इन्हें जो काफ़ी कठिनाइयां भी जड़ी से सामने करना पौंदा है।
5: बिल्कुल, कहना है दिखा कि जियां हर साल के भी इन्हों का आना जाना के भी लगी रहा है।
6: जी
5: जियां कि हुण मतलब ठंड वाला मौसम होना है तो इन्हों थले जेड़े मैदानी क्षेत्र ने उसकी तरफ आना है ना, तो काफ़ी जेड़ा इन्हों का अहां बोली सकते कि कठिन भरा जेड़ा जीवन है, और दिखा कि बोलते ना कि कमाने ताई इंसान जो क्या क्या नहीं करना पौंदा।
6: जी जी जी,
5: तो एक क्या होंगे कि एक बोलते ना अपने कम्मा दे प्रति एक मन जो लगन होना चाहिए है।
6: जी जी,
5: और अहां तो बोलते कि दिखा हर इंसान का जी अपने अपने स्तर पर जीवन के भी कठिन रहता है।
6: हाँ जी,
5: लेकिन जिस कम्मे दे प्रति लगन है तो वो काम के भी इंसान जो बड़ा प्यारा लगता है, और अगर हाँ उस काम जो नहीं करते हैं तो एक कुछ अजीब दे रहता है।
6: बिल्कुल, और ये जेडे साढ़े कम भेड़ बकरी पालन हुई है, पशु पालन हुई है, साढ़े पारंपरिक और साढ़े पूर्वज जेड़े से करते आए हैं और इन्हों कमां च सानू जेड़ा से लगातार संयोज संरक्षित करना चाहिए और अहां जो जेड़ा से इन्हों कमां कन्ने लगातार जुड़े रहना चाहिए है ना।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
6: जियां कि अहां पिछले समय च जेड़े से जलू बरसातें होंदियां ही ना तो अहां उपर धारा पर चली जाते जियां कि त्रियुंद होई आ लाका होई आ इन्हां क्षेत्र जाते तो तू खूब सारिया रौनक जी लगी होंगे साढ़े जेडे जी हम भेड़ बकरी पालन जो पालक न सह चंबे चली जाते तो साढ़े जेडे इतू के पशु पालक न सह अपनी गाय मई ले के जेडे से उपर धारा चली जाते बरसाती मौसम च तो तिथु खा खूब सारी जी से रौनक मेला जेड़ा से लगे होंगे पर हूँ जेड़ा से थोड़ा थोड़ा हूँ ये कम जेड़े से थोड़े लोग घटाईते हैं और कुछ एक ही भेड़ पालक साढ़े पशु पालक न सह धारा दर पास जेडे से अजकल जा करते हैं। हाँ यही इन्होंने अपील करनी कि हाँ ये जेडे साढ़े पारंपरिक कम न इन्हें जो अहाँ संरक्षित करना और इन्होंने जुड़ी के जेड़ा से इस जो अहाँ बढ़ावा जेड़ा से जरूर देना है।
5: बिल्कुल, तो किसान साथियों फिर यहाँ सुनना सारे रली मिली एक प्यारा दे लोकगीत तो सुनते हैं लोकगीत।

0: जी तक साढ़े साथी इसी कार्यक्रम दे जेड़ा अंतिम लोकगीत है इसके कन्ने साढ़े कार्यक्रम का समय इतों ही संपन्न होता पर जाने ते पहले दस दिए कि तकनीकी सहयोग रही है सुरिंदर कपूर और रदा कने प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह हूँ अपने टियाले के सदस्य पंच जो
1: कने बड़का चाचू दिया अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजाक राय दिया। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों के निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इसी बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक गलियारे शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। प्रदेश भर में भाजपा ने हवन यज्ञ कर मांगी लंबी उम्र की दुआ। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से किया जन कल्याणकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश सरकार व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन को डेफर करने की अधिसूचना ली वापस। जुलाई में बकाया राशि सहित मिलेगा पूरा वेतन। और नाहन में सर्वसम्मति से चुने गए पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, भाजपा ने दूसरी बार जमाया कब्जा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का कीर्तिमान स्थापित करने की खुशी और उनकी दीर्घायु की कामना में आज प्रदेश भर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सोलन में भाजपा शहरी मंडल द्वारा इस मौके पर आयोजित हवन यज्ञ के बाद भारत सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कई विकराल समस्याएं आईं, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक देश को इन समस्याओं से उबारा।
1: आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रुतबा उन्होंने हासिल किया है और इन 12 सालों में आदरणीय मोदी जी ने देश को जो आर्थिक तौर पर मजबूत किया है, देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है, अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। ऐसा प्रधानमंत्री जिसके हाथों में देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी, तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आज पूरे देश मंदिरों में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
0: शिमला में भी इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ का आयोजन कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर भाजपा उपाध्यक्ष व विधायक विनोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में नई पहचान स्थापित की है।
2: आज शिमला के राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के दीर्घ आयु के लिए, वो स्वस्थ रहे, देश के करोड़ों लोगों की सेवा इसी तरह से करते रहे, उस संदर्भ में आज राम मंदिर में हवन और पूजा का आयोजन यहाँ पे किया गया।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे जन कल्याणकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। राज्यपाल आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर व निशुल्क दंत स्वास्थ्य जांच शिविर के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने रेड क्रॉस द्वारा समाज के प्रति किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने बाद में अखिल भारतीय कलाकार संघ के वार्षिक समारोह और अखिल भारतीय नाट्य व नृत्य प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता, संवेदनशीलता और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रभावशाली माध्यम भी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिमला में श्रम व रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक समय और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को प्रमाण पत्र और लाइसेंस सेवाओं जैसी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटाइज करने के निर्देश भी दिए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है और यहां विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि घुमारवीं में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय भवन के कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त 7 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के पास सरकारी भूमि पर बसे दुकानदारों और अन्य काम करने वाले 113 परिवारों को 16 करोड़ 76 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। उन्होंने कहा कि ये पहला ऐसा मामला है जहां सरकारी भूमि पर कारोबार करने वालों को सरकार भूमि अधिग्रहण करने के लिए सहायता राशि प्रदान कर रही है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन के कुछ हिस्से को स्थगित करने के आदेश वापस ले लिए हैं। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार स्थगित की गई वेतन की रकम अब इन्हें जुलाई महीने में जून महीने के वेतन के साथ मिल जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री के वेतन का 50% हिस्सा आगामी आदेशों तक स्थगित रहेगा। प्रदेश सरकार ने 18 अप्रैल को जारी अधिसूचना में उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन को कुछ हिस्सा डिफर कर दिया था। पंचायत समिति नाहन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने फिर से कब्जा जमा लिया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज हुए चुनाव में भाजपा समर्थित रमेश चौधरी को अध्यक्ष और माया देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। नाहन के SDM राजीव सांख्यान ने बताया कि चुनाव में 15 में से 11 सदस्यों ने हिस्सा लिया और चुनाव सर्वसम्मति से हुआ।
3: पंचायत समिति नाहन के लिए अध्यक्ष पद के लिए श्री रमेश कुमार करकरण ग्राम पालियों को निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष किया गया और उपाध्यक्ष पद के लिए माया देवी पत्नी अशोक कुमार ग्राम बलसार ग्राम पंचायत कौलामाला भुगतो पंचायत समिति नाहन का निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया और उसके बाद विधि के अनुसार दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संविधान और सत्यम शपथ दिलाई।
0: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास और इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की कल्याण की दिशा में प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। आयोग के अध्यक्ष अत्र सिंह आर्य ने शिमला में उच्च अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल जनजातीय विकास की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों ने आज युवा संसद कार्यक्रम के तहत प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के साथ बातचीत भी की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति की है और करोड़ों गरीबों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। बिंदल ने आज नाहन में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों तक पहुंची है और आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई कर देश को अधिक सुरक्षित बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 12 और 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। मंडी जिला के स्कूलों में किए गए सोशल ऑडिट में आपदा प्रबंधन, आधारभूत ढांचे की सुरक्षा और समावेशी शिक्षा से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आई हैं। सर्वेक्षण में एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्रियान्वयन और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में भी कमियां पाई गई हैं। सर्वेक्षण से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि इन निष्कर्षों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है ताकि जिला के सभी स्कूल विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित हो सकें। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। राजधानी शिमला में भी आज तापमान 28.3 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके चलते लोगों को जोरदार तपिश का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने और 4 जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में कुछ स्थानों पर अंधड़, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव में आज से मिनी बैडमिंटन चैंपियनशिप आरंभ हुई। चैंपियनशिप का शुभारंभ उपायुक्त अनुपम कश्यप ने किया। ये चैंपियनशिप अंडर 11, 13 और 15 आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों के लिए आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में शिमला जिला से लगभग 180 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उपायुक्त ने इस मौके पर कहा कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रतियोगिता का आयोजन शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए गूगल फॉर्म माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। प्रदेश भर में भाजपा ने हवन यज्ञ कर मांगी लंबी उम्र की दुआ। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से किया जन कल्याणकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश सरकार व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन को डेफर करने की अधिसूचना ली वापस। जुलाई में बकाया राशि सहित मिलेगा पूरा वेतन। और नाहन में सर्वसम्मति से चुने गए पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, भाजपा ने दूसरी बार जमाया कब्जा।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं और अब समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का।

0: एसयूवी का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स, और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, और कार्यक्रम का अगला पंजाबी गीत सतिंदर सरताज की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरज, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं देश गान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट 9 रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाज़ों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और NDA शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
4: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
6: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
5: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तर

0: गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे. इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है. मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं.
1: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
2: Aaj desh ka har nagrik Vikasit Bharat ke sapne se bhara hua hai. विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा. देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है, और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है. एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कूचक्र से आज

0: श्रोताओं, प्रेम धवन बॉलीवुड के एक भारतीय गीतकार, संगीतकार, कोरियोग्राफर और अभिनेता थे, जो अपनी देशभक्ति गीतों, विशेष रूप से 1965 में मनोज कुमार अभिनीत फिल्म शहीद के गीतों और संगीत के लिए जाने जाते थे।
1: मजबूर चला

श्रोताओं, एक ही गीतकार के क्रम में आज आप सुन रहे हैं गीतकार प्रेम धवन के लिखे गीत। प्रेम धवन को 1971 में सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और 1970 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

अभी आप सुन रहे थे एक ही गीतकार के क्रम में गीतकार प्रेम धवन के लिखे गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से चर्चा का विषय है रिले किया जाएगा।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं।

0: इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए उसके लिए जो भूमिका ये कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहाँ, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है, जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइन्स खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
0: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है। साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है। उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है, वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक UPI पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें, इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में UPI और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स, घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है, आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के, और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, ना जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, कि आज पूरा देश, और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शिखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिये ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है, उनके लिए कभी भी सरकार की

0: भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है,
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है, उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल, विकसित भाव ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है वो आनंद जी, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं और अब समय है रूपक का।

पठानकोट नूरपुर मार्ग पर जसूर के पास से एक खुली सड़क कांगड़ा दिशा में जाती है। इसी मार्ग पर जसूर से लगभग 26 किलोमीटर दूर एक पठार पर 3 मंजिला विशाल एवं भव्य महलों के अवशेष मिलेंगे। ये ज्वाली के महल हैं। पकी सुर्ख ईंटों और चूने तथा सुर्खी से बनाए गए महल कभी इस इलाके के सौंदर्य को 4 चांद लगाते थे। एक नाले के दहाने पर स्थित इन महलों में हर सुख

नीचे पहले माले में अहलकारों की आवाज गुड़े थे तो दूसरे माले पर निर्मित प्रकोष्ठ अत्यंत खूबसूरती और नफासत से बनाए गए थे, जिनकी भित्तियों पर अनेक विषयों पर चित्र अंकित किए गए थे, जिनके हाशिए को बल्लरियों से सज्जित किया गया था। वस्तुतः ये रानी ज्वाला का महल था, जो तीन हालनुमा प्रकोष्ठों से निर्मित था। एक में उसका शयन कक्ष था, जो रोमांचित कर देने वाली तस्वीरों, नायिकाओं के पारदर्शी जामे लिए मांसल शरीर दरबार दृश्यों के अलावा अनेक दृश्यावलियां इन भित्तियों पर अंकित थी। दूसरे प्रकोष्ठ में बैठक थी और तीसरा प्रकोष्ठ अतिथि गृह था, जिसमें मात्र शाही महिलाएं ही ठहर सकती थीं। ये दोनों प्रकोष्ठ भी सजे हुए थे।

पर अब दीवारों से प्लास्टर उखड़ गया है और दीवारें नंगी हो आई हैं। दूसरा माला बारादरी की तरह बनाया गया था, जिसमें मेहराबनुमा द्वार बाहर की ओर खुलते थे, तो दूसरी ओर नदी की धारा की ओर से भी हवा की निकासी इस प्रकार थी कि गर्मियों में ठंडी हवा इन महलों में निवासियों को अप्लावित करती रहती थी। तीसरे माले तक संकरी सीढ़ियां ऊपर ले जाती थीं। तीन छोटे प्रकोष्ठों की ओर जिनके बाहर एक खुला गलियारा था। इस माले की छत अति कलात्मक गुंबदनुमा थी, जो कालांतर में प्राकृतिक विपदाओं के कारण और संभाल ना होने के कारण गिर पड़ी थी।

0: हम ज्वाली के किले के पास खड़े हैं और वहीं हमें एक वयोवृद्ध से परिचय हुआ है। आपका नाम जी?
1: ब्रह्मदास।
0: ब्रह्मदास जी, आपकी उम्र इस समय कितनी होगी?
1: उस वाले होगी 70 के करीब।
0: 70 के करीब। ये जो हम किला देख रहे हैं, इस किले के बारे में आप हमें कुछ बताइए। आप
1: राजा गुलेर गुलेरिया ना जी, रियासत गुलेर है
0: जी,
1: हरिपुर के पास
0: जी।
1: तो वहाँ का जो राजा था ना, उसका नाम था शमशेर सिंह। हमने जो सुना है तो शमशेर सिंह जो था वो वहाँ ब्यास दरियाए ब्यास के मतलब बीच में एक बल्ला होता था। बल्ला मतलब बैरान जमीन,
0: खाली
1: जगह थी और आसपास दरिया बगते थे। तो वहाँ एक कोई मृग था, शेर था। तो शेर ने लोगों का बड़ा नुकसान किया। तो उसने अपने सब हाहाकार कर दी। नूरपुर का राजा तो था, उसको भी पास बुलाया। उसने अपने शिकारी भेजे अपने लेकर, ना आप खुद नहीं गए वो। तो वो शिकारी जो थे वो देखते बांधते रहे, लेकिन उनसे मरा नहीं, वो कामयाब नहीं हुआ वो। तो फिर इसकी इसने कहना चलो मैं चलता हूँ। राजा शमशेर सिंह गुलेर के राजा थे। तो गुलेर के राजा जो थे तो फिर वो उस वक्त जो था वो टालों से और तलवारों से लड़ाई होती थी।
0: पुराना
1: जमाना था
0: जी।
1: तो उसके बाद वो गए, उन्होंने शेर को ललकारा। जब शेर को ललकारा के आजा तो मैं भी शेर हूँ और तू भी शेर है। जिस वक्त आया उसने टाल पे उसके जो भार था ना वो थाम लिया
0: राजा ने,
1: यानी इस राजा के पास इतनी ताकत थी। राजा जो थे वो 4 रुपये जो होते थे चांदी के वो मोड़ देते थे। एक नारियल इधर, एक नारियल इस वहाँ में, एक नारियल इधर, एक एट ए टाइम वो रुपये बन देते। जब उसने मार दिया तो उसके वाह लगी उन्हें गुलेर वाले की, बोले नूरपुर राजा तो ऐसा है, ये तो नौकरों से काम लेता है, खुद में कुछ नहीं है, उसको शरीर ताकत नहीं है। उसको इस बात का हसद हुआ कि मैं तो भाई बदनाम हो गया और ये तो गुलेर वाले तो कहना नाम कमा गए हैं। तो वो लगा बोलना, भाई नहीं मैं ऐसे इसे किस ढंग से इसको मतलब मैं जवाल करूं। उसने सोचा पे चलो अब ऐसे तो और कोई नहीं है। जब गुलेर राजा की लड़की थी ना उसकी नूरपुर की, नूरपुर वालों की, वो उसने स्वयंवर चा दिया। तो कह हाँ राजा नूरपुर ने अपनी लड़की का स्वयंवर चा दिया। तो उसने कहा कि भाई घोड़ी पे जो है ना मतलब
0: खूंटा
1: काट दिया, लेकिन वो खूंटा नहीं था, वो खैर का वृक्ष था और उसको बढ़ई से मतलब तरखान से ऐसा खेल कर बनवाया कि ऐसा पता लगा वो डंडा कटा हुआ है, लेकिन उसमें जड़ें थी,
0: जड़ें नीचे थी
1: जमीन, जड़ें में नीचे थी। तो आगे वो सारे उनके पंडित वगैरह जो थे वो भी आ गए गुलेर वालों के। तो उसने देखा भाई जब वो बारी आई, जब घोड़ी पे गए राजा ने ऐसे जब किया तो खूंटा उखाड़ दिया, लेकिन उसमें जड़ें निकल आई। फिर उसको शक हो गया कि ये बेईमान है
0: जो गुलेर के राजा,
1: हाँ जो गुलेर के राजा थे, उन्होंने सोचा कि ये तो बेईमान है, ये मतलब ठीक नहीं है। तो फिर उसने जब वो नूरपुर वाले को पता लग गया पे इसने तो अब कहना खूंटा जो है वो उखाड़ दिया है। तो उखाड़ने के बाद उसको लड़की तो ब्याहना पड़ी, हाँ ब्याहनी पड़ी।
0: उस लड़की का क्या नाम था? उस लड़की
1: ज्वालपा,
0: यही मतलब ज्वाली जिनके नाम थे।
1: वो लड़की चली गई तो ले आया, शादी हो गई। तो वहाँ पर ना उसने सोचा पे अब ये तो नाम कमा गए हैं फिर भी, लेकिन इसको और कैसे जवाल किया जाए। नूरपुर वालों ने उन्हें सोचा कि चलो मीठा मीठा जहर दे दो, रसोई में डाल दो।
0: अच्छा, खाने में जहर,
1: खाने में डाल दी।
0: अच्छा।
1: तो उसने कहा भाई खाने में जहर डाल दिया तो अब क्या होगा। तो उसने अपने राजा ने अपने पंडित के साथ बात की। उन्हें कहा पंडित जी मतलब राजा साहब कोई डराने की बात नहीं, आपने ये करना कि जब तक खा जाओ रोटी कहना, जब तक मतलब सब खा ना चुके हैं तब तक नगारा जो है ना वो उसको ऐसे ऐसे करते रहना, दुरु देते रहना, हाँ ढोल ढमाका साज होता था ना पहले, अब पहले मतलब होता था साज। अब तो लोग कम रहते, अब तो दूसरे कई अब कई कहीं आता। तो उसने नगारा शुरू कर दिया, बोले जी कोई बात नहीं,
0: एक तरफ खाना शुरू हो गया, नगारा
1: बजाना शुरू हो गया। उनको कहा कि आपको रोटी बाद में खिलाएंगे, आपको रोटी बाद में खिलाई जाएगी, लेकिन नगारा बंद ना हो बिल्कुल,
0: जब तक खाना चले
1: साथ। हाँ, नगारा भी बजता रहे। हाँ जी, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे होगा। उन्होंने नगारा बजता रहा और खा के चले गए। लेकिन एक जो बूढ़ा था उसके कान में वो नगारे की आवाज़ नहीं पड़ी, वो जहर नहीं चली, वो ख़त्म हो गया, वो उसकी पोल नज़र आ गई। लेकिन पहले जो था ना अपना, उन्होंने चीरियों ने इसको भेज दिया था वलेर वाले राजे को, के भाई इतना बलवान राजा। तो जब आया ना वो, तो ये जो हरिपुर है ना गुलेर, ज्वाली जो है वो सेंटर में है, जितना फासला ज्वाली का और गुलेर का है उतना ही फासला ज्वाली का और नूरपुर का है।
0: ठीक है।
1: जब सेंटर में आए राजा जी, तो राजा उन्होंने वहाँ पर डोली उतार दी। अच्छा, वो लड़की लगी कहने कि भाई मैंने क्या मतलब दोष है मेरे में, मैंने शादी की है, तुम ब्याह कर लाए हो, फेरे लिए हुए हैं, तो ऐसे मेरा क्या कसूर है। बोले तेरा कसूर कोई नहीं है, लेकिन कसूर तेरा है माँ बाप का, क्योंकि वो बेईमान है और तू उनकी औलाद है। तो उसने कहा पे हाँ, कहना ठीक है, मैं फेरे लिए हैं, मैं ब्याह कर लाया हूँ, तो उसके बाद मैं तुझे जो कुछ तेरा खर्चा पर्चा होगा सब कुछ दूंगा, राजा ने कहा गुलेर वाले ने। तो फिर लगा बोलना भाई, तो ये जो है ना कुछ जमीन दी उनको, हाँ ये वही जगह है, तो नीचे नाउन बनाया हुआ, जो नाउन है ना पानी का बड़ा बड़ा, वो उसका ही बनाया हुआ
0: जी, जी।
1: वो कुआड़ बनाया हुआ
0: जी।
1: जितना मतलब दुकानें बनाकर दी थी अपने, यानी शहर बिछा दिया ना रानी ने, बसाया हुआ है, तो यहाँ बनाया, उसने जो कुछ भी कहा ना वो कर दिया। ये ठाकर द्वारा है, ये जो मतलब मंदिर है सेंटर के किनारे, वो भी उनका बनाया हुआ, लक्ष्मी नारायण का मंदिर।
2: अब सब कुछ समाप्त हो गया है, मात्र प्रवेश द्वार और ऊपरी मेहराबें बची हैं। इन महलों के साथ लगते और भी भवनों का एक समूह था जो इन महलों के साथ ही सटा था। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार ये भवन शाही कार्यालय थे, जिनके निचले माले में शाही घुड़साल थी। अब इस भवन समूह का भी बुरा हाल है। ये महल कब बने, इसके बारे में अनेक अटकलें लगाई जाती रही हैं।
3: चर्चित कथा के अनुसार नूरपुरियों और गुलेरियों में आपस में किसी बात पर ठन गई थी। परिणामतः गुलेर के राजा बलदेव सिंह ने नूरपुर के तत्कालीन राजा का अपमान कर दिया। फलस्वरूप वह गुलेर के राजा बलदेव सिंह से अपना हिसाब चुकता करने की बात मन में रख बाट जोहने लगा कि कब अवसर मिले और वह अपना हिसाब चुकाए। साथ ही साथ उसने अपनी बिगड़ैल शहजादी के ब्याह के रिश्ते की बात गुलेर के शहजादे के साथ चलाई और रिश्ता कबूल हो जाने पर उसने शाही बारात को जहर देने की योजना बनाई।
2: इसकी भनक गुलेर की एक कन्या जो नूरपुर में राजपुरोहित के घराने में ब्याही थी के कान में पड़ी, तो उसने ये बात गुलेर से आए पुरोहित जो रिश्ते में उसके चाचा लगते थे के कान में डाल दी, तो ये बात राजा बलदेव सिंह के कान में भी जा पहुंची। गुलेर में एक नगाड़ा बजाने वाला जहर को दूर करने में सिद्धस्थ था, वे नगाड़ा बजाकर जहर खींच लेता था। सौभाग्य से वे नगाड़े के साथ बाजे गाजे वालों के आगे ही चल रहा था। उसे गुप्त रूप से बात समझाई गई तो उसने सुझाया कि खाने पर बैठने से पहले वे नगाड़ा बजाता रहेगा और जब तक नगाड़ा बजाता रहे कोई खाना नहीं खाएगा, जब नगाड़ा बजना बंद हो जाए तो ही खाने पर बैठे।
3: कहते हैं कि खाना शुरू होने से पहले उसने नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया, जिससे खाने में पड़ा जहर धीरे धीरे हवा में घुलकर नगाड़े में जाता रहा। वस्तुतः नगाड़ा जहर को सींचता रहा और जहर के प्रभाव से वह फट गया। तब बारातियों ने खाना खाया और ब्याह कर शहजादी को बहू बनाकर राजा बलदेव सिंह जब लिवा लाए तो उनके लड़के गोवर्धन सिंह ने उसे गुलेर ले जाने के बजाय ऐसी जगह रखने की बात सोची जो नूरपुर के पास भी हो और गुलेर की सीमा में भी हो।
2: और इसके एकांतवास के लिए अलग से महल बनाए गए, जो वर्तमान ज्वाली के स्थान पर भगना विशेष के तौर पर स्थित हैं। ये उसका बदला था जो गुलेर का शहजादा नूरपुरियों के षड्यंत्र के खिलाफ लेना चाहता था।
0: ज्वाली महल के तीसरी मंजिल के ऊपर अब हम खड़े हैं और यहाँ इसके नीचे एक मंदिर है, इस महल के नीचे, और जहाँ खड़े हैं वहाँ भी कालका माता का मंदिर है। और यहाँ की इस समय जो सेवा कर रहे हैं इस मंदिर की और इस प्रांगण की, इन महलों की, वो हमारे साथ हैं माता जी। माता जी, आप कब से यहाँ इनकी सेवा कर रहे हैं?
4: मैं इनकी सेवा 1991 से कर रही हूँ।
0: 1991 से आप इसी गांव से हैं और आप अपना नाम भी बताइए।
4: मेरा नाम सुरक्षा देवी है, सुरक्षा शर्मा।
0: तो आपको

0: कैसे प्रेरणा मिली इस मंदिर की सेवा करने की और इन महलों की देखरेख के लिए?
1: मैं बहुत बीमार थी तो माता ने मुझे ठीक किया। फिर पहले मैंने बाहर का मंदिर जो है ना, इसको बनाने का निश्चय किया। जब बनाने लगी तो सब कह लगे कि हम सबने सहयोग दिया, फिर वो बन गया। तो उसके बाद माता ने फिर कहा कि मुझे अब तो यहाँ अंदर आ, अंदर पुजारी चाहती थी ना माता, तो उन्होंने कहा कि आप अंदर आ जाओ, ये सब तुम्हारा ही है और यहाँ आकर मेरी सेवा करो। फिर यहाँ माता की पिंडी रखी, उससे तब से मैं सेवा कर रही हूँ। पहले बहुत बीमार थी, माता ने ठीक किया मेरे को।
0: और जो भी हम महल देख रहे हैं, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं, ऊपर आए हैं, इनके बारे में आप बताइए कि आपको ये जो कमरे हैं इनमें कौन कौन सा कमरा कैसा लग रहा है? ऊपर जहाँ खड़े हैं वहाँ ऊपर की दीवारें आप हमें बड़ी बड़ी ईंटों की भी दिखाई दे रही हैं, इनके बारे में कुछ बताइए।
1: ये पहले तो ईंटें की बनी है, ऊपर जो है ना ये चार ईंटें हैं, बड़ी चौड़ी ईंटें हैं, 400 ईंटें हैं, ये बड़ी बनी हुई स्नानकशा ईंट नहीं है ये, और सदियों से बनी है ऐसा देखा मैंने। हम यही सोचते हैं ना, यहाँ माता रहती होगी ऊपर कमरे में, साथ में रसोई होगी उनकी, और बाहर चौबारे में बैठ के हवा वगैरह लेते होंगे, वैसे ही सोचते रहते हैं ना।
0: माता से आपका आशय किस माता से है?
1: ये माता है जो ज्वाली शहर की मालिक है, ज्वालपा रानी है जो, वो माता है, उसको माता कहते हैं।
0: जैसे ज्वाली रानी ज्वाला के नाम से ही मशहूर हुआ, क्या उसको ही माता कहा जा रहा है या उससे पहले किसी देवी को जो पूजनीय थी यहाँ की?
1: जो वो माता है उसको माता कहते हैं, जो दूसरी माता है ना ऊपर काल का रूप है, वो माता उसको भी बोलते हैं।
0: और ज्वाला रानी है जो, वो माता से अलग रानी है वो।
1: क्योंकि उसने भक्ति से टाइम निकाला ना, तो जो भी भक्ति करता है, जो देवी देवताओं में समय रहता है, उसको माता ही कहते हैं ना, तो उसकी प्रेरणा से। पहले शहर में बहुत यहाँ पर होते थे दंगे फसाद होना, फिर बसों का गिरना, बहुत कुछ नुकसान करती थी माता। जब के बाद ये मंदिर बना है ना, उसके बाद शाद है ज्वाला जी में, ज्वाली में।
0: अब रानी ज्वाला के बारे में तो बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, लेकिन रानी के साथ राजा का नाम इतना नहीं जुड़ा हुआ, इसकी क्या वजह रही होगी?
1: बुजुर्ग जो आते हैं ना अलग अलग बताते हैं, पिछले और कहते थे दूसरे कहते हैं, लेकिन राजा का नाम शमशेर सिंह था, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया था ना, वो शमशेर सिंह था उनका नाम।
0: तो इन महलों को बनाने का क्या मतलब रहा होगा उन दिनों जब रानी अकेली रहती थी यहाँ?
1: पहले यहाँ तबुओं में छोड़ के गए थे रानी को, तो फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मंदिर इतना महल बना के दिए उनको, दासी दासियाँ सब थे ना, लेकिन वो तबुओं छोड़ के गए थे ना, तो फिर उसके बाद ये महल बनाए थे।
0: इसी ऊंचाई से हमें नजर आ रहा है, नीचे छोटा सा तालाब है, इस जगह का नाम क्या है? पानी भी है, मुझे लोग भी नजर आ रहे हैं, वहाँ नहा रहे हैं अभी भी लोग।
1: वो नावन बनाया है ना, माता ने बनवाया है नावन, नावन कहते हैं ना उसको, पानी का चश्मा, तो माता ने बनवाया था चश्मा वो। वहाँ उसमें मछली छोड़ी गई थी, उसमें बालू डाला हुआ था सोने का, वो मछली काफी साल रही, लेकिन अब 10-12 साल से 15 साल से वो खत्म हो गई है, इसे मार दी हुई है।
0: क्या ये नावन जो जगह है नहाने के लिए, उसी समय से जब से ये किला, जब से ये महल बने हैं?
1: ये किला और जब से बने हैं, 108 पैड़ियाँ हैं, ये उस जभी से बनी है माता के नहाने के लिए, जब से बना हुआ है ये। और जो दुकानें हैं, 108 दुकानें हैं माता के, बाजार जो सारा है ना, ये सब माता के उनका बनाया हुई दुकानें हैं।
0: छोटा सा जो भी ये शहर है,
1: हाँ सब माता ने बनाया, पहले ये जंगली था।
0: जंगल के अलावा इसी महल के चारों तरफ अगर ना भी कहें तो 2-3 साइड पे तो नजर आ रहा है कि एक खाई सी नजर आ रही है, ये खाई क्या है ये?
1: नहीं ये तो जाता है गांवों को जाता है पानी, ये बाद में 1900 में बनाई थी नहर, ये 1900 में नहर खोदी थी।
0: उस नहर की बात नहीं कर रहा हूँ, महल के बिल्कुल साथ दिखाई दे रही है ना, खड्डी खाली खाली पड़ी है जो, ये बिल्कुल जो जो
1: दीवार होगी माता की,
0: ये महल की
1: दीवार, दीवार रक्षा के लिए दीवार बनी हुई थी चारों तरफ, गिर गई है ना अभी।
0: तो माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इसी ज्वाली महल के हम एक ऐसे गलियारे में खड़े हैं जहां मेरी बाईं तरफ से बहुत ठंडी हवा इस समय भी आ रही है और दाईं तरफ पूर्व दिशा है, यहां से सूरज की सीधी किरणें आती हैं। तो इसी जगह पर कुछ बाहर से पर्यटक आए हुए हैं और उनसे हमने जब बातचीत की। भाई साहब, आपका नाम?
1: मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है।
0: आप शर्मा जी कहाँ से आए हैं?
1: मैं दिल्ली से।
0: दिल्ली से आए?
1: हाँ जी।
0: तो दिल्ली से आपको कौन सी ऐसी चीज़ें यहाँ तक खींच रही?
1: मैं, मेरी ससुराल जी दरी है जी। वैसे मैं जब भी आता हूँ यहाँ जरूर आता हूँ, यहाँ नज़ारा देखने का बहुत ही अच्छा है।
0: इन पुराने महलों को, इन पुराने चबूतरों को देखकर आपको कैसा लगा?
1: इन पुराने महलों चबूतरों को देख कैसा लगा, काश उस समय हम पैदा कभी हुआ होते यहाँ पर।
0: बहुत अच्छे।
1: तो उस टाइम हमें ये चीज़ देखने को मिलती तो ज़्यादा अच्छा होता।
0: आप जिस जगह हम खड़े हैं वो ऐसे अच्छी जगह है कि जहाँ बिल्कुल नेचुरल सीधी प्राकृतिक तौर पे ठंडी हवा आ रही है।
1: हाँ जी। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ बिल्कुल धौलाधार पर्वत बिल्कुल सामने सफ़ेद चादर की तरह पूरा बिछा हुआ है, देखने में इतना बढ़िया लग रहा है। शायद उस टाइम जो लोग रहे होंगे कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिन्होंने ये नज़ारा, महल और ये नज़ारा उस टाइम भी देखा हुआ।
0: आप दिल्ली से आए हैं, इस समय जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, जहाँ का जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल लगा हुआ है इन चबूतरों को, उनको देख कर आपको कैसा महसूस हो रहा है?
1: उनको देख के तो लगता है इन मसाले के आगे तो सीमेंट भी बेकार है। करीब 500-600 साल पुराना ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, कोई सरिया, कोई दीवार, कोई बीम वगैरह इसमें नहीं है। अभी तक वही मजबूती इसमें बरकरार है। अगर इसकी देखभाल पुराने टाइम से अगर लगातार होती रहती तो मैं समझता हूँ ये महल एज इट इज़ वैसे ही रहता जैसे आज से 500-700 साल पहले था।
0: भैया जी, आपसे अभी और बात करते हैं। आप भी, मैं देख रहा हूँ आप मुझे स्टूडेंट लगते हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप भी क्या महल देखने आए हैं?
2: हाँ जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है जी और मैं यहीं पास ही स्कूल में यहीं पढ़ा हूँ और काफ़ी समय से जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं इसी महल को देख रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए भी चले जाते हैं कभी कभी।
0: इन महलों में आके आपको शांति भी मिलती है?
2: काफ़ी शांति मिलती है यहाँ आके, बहुत मन को बहुत अच्छा लगता है।
0: और आपके ये क्लास वालों, आपका नाम?
3: मेरा नाम योगेश कुमार है जी, मैं एमए का स्टूडेंट हूँ।
0: एमए कौन से हिंदी का?
3: हिंदी का, हिंदी का। और मैं पठानकोट का हूँ, लेकिन यह मेरी रिश्तेदारी है इसलिए मैं यहाँ अक्सर घूमने आ जाता हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत शांति मिलती है। जब भी मैं उब जाता हूँ पढ़ाई से तो यहाँ चलाता हूँ। यहाँ का नज़ारा देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे वहाँ पठानकोट में ऐसा कोई भी पहाड़ी क्षेत्र या ऐसा महल नहीं है। तो यहाँ देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे मैं तकरीबन 15 साल से देख रहा हूँ इस महल को, अक्सर आता हूँ। लेकिन जब से इसको देख रहा हूँ तो मेरे को लगता था कि ये 2-4 साल में गिर जाएगा, लेकिन अब भी मैं जब 2005 में यहाँ आया हूँ तो ये वैसे का वैसा ही है, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं बहुत ही खुश हूँ पुराने इन कलाकृतियों को देखकर कि ये जब इनमें लोग रहते होंगे, जो इन जहाँ की रानी होंगी, तो वो बहुत ही खुश नसीब होंगी।
0: सुनने में है कि यहाँ की रानी ज्वाली, जहाँ ज्वाला रानी थी यहाँ, उसके बारे में कुछ आपने सुना या पढ़ा? जितना भी पढ़ा सुना आप हमें बताइए।
3: देखिए, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन यहाँ के मेरे जो रिश्तेदार हैं उनसे मैंने पूछा है कि वो बहुत ही अच्छी रानी थी, भक्ति वाली थी। उन्होंने ये महल उनके स्वामी ने बनाया था उनके लिए, वो उनकी रिहाइश के लिए उनको दे गए थे। तो उन्होंने यहाँ बहुत ही ज़्यादा वो की है, तरक्की की है इसको बनाने के लिए, और वो यहाँ नीचे नहाने भी जाया करती थी। इस महल की सुरक्षा के लिए उन्होंने चारों तरफ एक नहर बनाई हुई है, जो कि बाहर से हमलावर अक्सर आ जाया करते थे, इसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने ये सब किया था।
4: यह बात कुछ हजम नहीं होती लगती। कोई भी पिता अपनी लड़की को विधवा नहीं देखना चाहता, और वह तो फिर राजा था। यदि षड्यंत्र रचा ही था तो जहर से जब वे नहीं मरे तो शादी क्यों कर दी? दूसरे बलदेव सिंह के नाम का कोई भी गुलेरिया राजा गुलेर की वंशावली में नहीं हुआ है। हाँ, गोवर्धन सिंह अवश्य गुलेर की गद्दी पर 1730 ईस्वी में बैठा था, पर उसके पिता का नाम दलीप सिंह था।
5: एक अन्य दंत कथा के अनुसार नूरपुर के राजा ने अपनी बेटी ज्वाला के लिए एक स्वयंवर रचा था। शर्त ये थी कि जो राजकुमार दौड़ते घोड़े पर सवार रहकर जमीन में गढ़े खूंटे को उखाड़ने में कामयाब होता है उसे राजकुमारी ब्याह दी जाएगी। वस्तुतः राजा ने एक सूखा पेड़ कटवाकर उसे खूंटे का रूप दे दिया था और पेड़ की जड़ें जमीन में ही गढ़ी रही थी। अनेक शहजादों ने कोशिश की पर असफल रहे। गुलेर का शहजादा गोवर्धन सिंह कुछ कुछ ताड़ गया था, अतः उसने ऐसी योजना बनाई कि अपनी कांख में खूंटे को लेकर भागते घोड़े को एड़ लगाई। खूंटा तो उखड़ गया पर घोड़े ने दम तोड़ दिया। गोवर्धन ने शादी तो कर ली पर अपने प्रिय घोड़े के दम तोड़ने पर वे इतना दुखी हुआ कि उसने उसका बदला विवाहित रानी ज्वाली को एकांतवास देकर चुकाया।
4: बदला चुकाने के लिए इतना विशाल और भव्य महल बनवाना और उसे बेशकीमती चित्रावलियों से अलंकृत करना और ज्वाली का नया कस्बा बसाना कि वह अपने आप में राज्य लगे, यह तभी संभव हो सकता है जब राजा रानी से खूब प्रणय रखता हो। और वह नहीं चाहता था कि कोई उसके प्रेम में खलल पड़े, अतः उसने नदी के किनारे एक ऊंचे पठार पर नैसर्गिक वातावरण में इस महल का निर्माण करवाया।
5: रानी की सुख सुविधा के लिए दासियों का कारवां और अनेक गांवों का राजस्व अहलकारों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता था। महल के बाहर सुंदर उद्यान था जिसमें अनेक स्थानों से फूलों और फलों के पौधे लिवाकर लगाए गए थे। महलों के नीचे थोड़ी दूरी पर ही एक कुदरती चश्मे को नौन का रूप दिया गया था जिसमें रानी और उसकी दासियां स्नान करती थी। आज भी ये एक वृहद सरोवर किसी स्विमिंग पूल की तरह लगता है और सारा वर्ष जल से अप्लावित रहता है। जब हम जनवरी माह में वहाँ गए थे तो ये जल से लबालब भरा था। लगभग 10-11 फुट गहरा और 25 फुट × 25 फुट रकबे में स्थित।
4: यह जल स्रोत अति निर्मल जल से अप्लावित था और इसमें लगभग 2.5-3 फुट लंबी अनेक मछलियां जल विहार कर रही थीं।
5: इसमें कोई शक नहीं कि ज्वाला नूरपुर की शहजादी थी और उसकी शादी गोवर्धन सिंह से हुई थी। हो सकता है कि इन दंतकथाओं में आंशिक सच्चाई हो। कभी गोवर्धन सिंह रानी से किसी कारणवश नाराज हो गया हो और अनेक दिनों तक वे रानी के पास नहीं आया हो, तथापि ज्वाला का नाम एक चर्चित गुलेरी रानी के तौर पर जाना जाता है। इस इलाके का नाम उसके नाम से ही ज्वाली चर्चित हुआ था। राजा गोवर्धन सिंह का देहांत 1760 ईस्वी में हुआ।
4: गोवर्धन सिंह के देहांत के बाद ज्वाला रानी कहाँ गई, इस पर भी अनेक विवादास्पद बातें सामने आती हैं। कुछ का कहना है कि वह कभी भी अपने जीते जी गुलेर नहीं गई। उसकी मृत्यु के बाद भी उसका अंतिम संस्कार नौण की निचली तरफ कर दिया गया था और ज्वाली गांव के निवर्तमान प्रधान के अनुसार ज्वाली की समाधि भी इस गांव में स्थित है।
5: दूसरे मत के अनुसार रानी राजा गोवर्धन सिंह की मृत्यु पर सती हो गई थी। एक अन्य दंत कथा के अनुसार राजा की मृत्यु के बाद रानी गुलेर की ओर चली गई, महल वीरान हो गए। रानी ज्वाला के साथ ही ये महल वजूद में आए थे और उसके साथ ही वीरान हो गए।
6: अभी आप सुन रहे थे रूपक ज्वाली के महल चौबारे। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं पुरानी फिल्मों से गीत चित्रपट संगीत में।

मोहम्मद रफ़ी और उषा की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए फिल्म हिमालय की गोद में का ये प्यारा सा गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने,

कार्यक्रम चित्रपट से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने। फिल्म का नाम है लैला मजनू और गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में

0: भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत हो गए। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, "The people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress." He said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace." He said, "The lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right."
3: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India, under Mr. Modi's leadership, has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail project, covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometers, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved two major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive, that is PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. Indian Railways has taken a major step to enhance passenger safety by launching nationwide fire safety audits at railway stations. The initiative aims to assess existing fire safety systems and identify areas requiring improvement to enhance passenger safety and protect railway assets. The Ministry of Railways said the audit will cover all critical safety infrastructure, including station buildings, electrical installations, air conditioning and ventilation systems, emergency exits and firefighting equipment. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at Australian Open tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Ines Castillo, 21-13, 21-11 in the first round clash of the tournament. Sindhu's pre-quarterfinal match will be played against compatriot and world number 39, Isharani Barua. And that is the end of this news bulletin.
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि की 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

होती है। कल प्रातः 5:55 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।